0: नामिका से और लगाया जाता है और एक अंगूठा से लगाया जाता है, ये तो मैं बस जानता हूँ कुछ छोटा से। बाद में हम अपने मास्टर जी जो हमारे पैनल के पीछे है उससे पूछेंगे। अगर जब हम लोग थोड़ा जल्दी नहीं करेंगे और बातों बातों में बस यही रुक जाएंगे तो हमारा कार्यक्रम में जो आज हमारे विशेषज्ञों ने
1: पर अभी ने आपने छेड़ा ना कि चंदन लगाना ये तर्जनी और अंगूठा था, अंगूठा से पुरुष को लगाता लगाया जाता
2: तर्जनी ये रहे।
1: अच्छा तर्जनी
2: इससे नहीं।
0: हाँ तो राजेंद्र जी ने दिखा दिया कि तर्जनी
2: रिंग फिंगर
0: को कहते अनामिका
1: अनामिका।
0: हाँ और अंगूठा
1: अंगूठा।
0: हाँ और सभी सुनने वाले ने देख नहीं पाए यहाँ से,
1: इसलिए
0: तर्जनी कहते हैं वैज फिंगर। तो राजेंद्र जी शांता जी को तो ये है कि बस अब बता ही दीजिए, पर अभी अगोल लेते हैं शांता जी।
1: अच्छा
0: बाद में देखेंगे कि उसके बारे में हम लोग कुछ और।
2: हाँ आगे बढ़ते हैं।
0: हाँ।
2: परिजात हरण में हिंदू को कुछ इस प्रकार कहा गया है, हिंद

विधीयते, अर्थात जो अपने तप से शत्रुओं का, दुष्टों का और पाप का नाश कर देता है वही हिंदू है। माधव दिग्विजय भी इन्हीं शब्दों को कुछ इस प्रकार उल्लेखित किया गया है, वो हम सुनाएंगे इस गाने के बाद। तो बढ़ते हैं, क्यों ना एक गाना सुनेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे।

0: प्रेम की गंगा बहाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो। संजय जी, आपने कौन सी जोत जलाई आज?
1: आज मैंने ये जोत जलाई कि ज्योति का प्रकाश, ज्योति का प्रकाश का जोत धीरे धीरे जल रहा है। और अभी तो शांता जी ने ऐसा प्रश्न रख दिया है कि कार्यक्रम में ये विषय था ही नहीं, पर इसके बारे में तो कुछ न कुछ बोलना ही पड़ेगा। और अब देखा जाए कि कैसे,
2: क्योंकि लाभदायक है और जानकारी इसमें है।
1: लाभदायक और जानकारी भी है राजेंद्र जी, तो ऐसा क्यों ना थोड़ा से इसके बारे में हम सबको सुना सकते हो आप या हम सब?
0: हाँ जरूर, जो रिंग फिंगर रहे
1: रिंग फिंगर,
0: उसको तो लेडीज को तिलक लगाया जाता है ज्यादा करके,
1: हाँ
0: ये छोटा तिलक, अगर पुरुष को भी लगाया तो छोटा रूप में।
1: हाँ जी,
0: जो अंगूठा रहे तो उसको राजपूत जैसे तिलक लगाते हैं नीचे से ऊपर तक,
1: नीचे से ऊपर,
0: हाँ बड़ा वाला है।
1: हाँ,
0: और जो तीन उंगली रहे बराबर,
1: हाँ,
0: उससे चंदन लगाते हैं, त्रिकुट,
1: त्रिकुट
0: जो लोग, कुछ लोग पंडित लोग त्रिकुट लगाते हैं या शंकराचार्य लोग जो लगाते हैं,
1: हाँ जी,
0: वो इसी से लगाते हैं। तो इस प्रकार तिलक के बारे में जो बात आप कर रहे थे ये है, ऐसा है,
1: ऐसा है। पर जी राजेंद्र जी, एक एक छोटा सा प्रश्न
0: जरूर,
1: आपने कहा नीचे से ऊपर, ऐसा हाँ, क्यों?
0: क्योंकि ये एक ये इस जगह पे भी जो चक्र है, आज्ञा चक्र है,
1: आज्ञा चक्र,
0: हाँ, उस चक्र को हम लोग एक वो देते हैं कि यहाँ पे जो तिलक है उसका प्रभाव उसमें रहता है, और वो आगे चक्र जो है चंदन लगाने से ठंडा रहता है और एकदम ज्योति, उससे ज्योति का जो आप हम लोगों को प्रोग्राम है
1: ज्योति का प्रकाश,
0: तो वहीं से ज्योति का प्रकाश भी होता है।
1: सही बात, सही बात। अच्छा, सुंदर संदेश आपने दे ही चुका है हम सबको। शांता जी, इसमें कोई शक?
2: बिल्कुल नहीं, पर हम ये खुशकिस्मत समझते हैं कि अपनी किस्मत को कभी दोष मत देना, है ना, अपनी किस्मत को कभी दोष मत देना। इंसान के रूप में हमको जन्म मिला है, तो ये किस्मत नहीं है तो और क्या है भला।
1: इंसान के रूप में हमें जन्म मिला है तो ये किस्मत है कि
0: नहीं तो क्या भला,
2: ताकि हम चंदन लगा सकते, तिलक लगा सकते हैं।
1: ये तो बहुत सौभाग्य की बात होता है, क्योंकि 84 लाख योनियों में से इंसान का योनि, यहाँ तक कि मैंने सुना है देवताओं भी ऐसा शरीर के तरसते। और हम सब यहाँ पर खास करके ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम बनाने के लिए सेवा के अंतर्गत यहाँ पहुँच गए हैं, और हम लोग के भी ऐसे इसमें मगन होना, इसमें संदेश छोटे छोटे रूप में हम सब के लिए खोज खोज के रखा जाता है। और हम सभी ये कार्यक्रम द्वारा आपके घर में, आप चाहे जहाँ भी हो, ये कार्यक्रम को 188 देशों तक सुना जा सकता है। कहीं भी हो आप ये कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, तो आपको और ये संदेश छोटे रूप में हम सब यहाँ से अपने जीवन के ज्योति के प्रकाश डालने के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं। राजेंद्र जी, आगे का वृतांत क्या है?
0: हाँ, आगे का जो वृतांत हमारा चल रहा था, आगे का वृतांत माधव दिग्विजय जी के अनुसार, ओंकार मंत्र मूलाढ्या पुनर्जन्मा दृढ़श्च गौ भक्तो भारत गरु हिंदू हिंदसा दूषक। अर्थात वो जो ओमकार को ईश्वरीय धुन माने, कर्मों पर विश्वास करे, गौपालक रहे तथा बुराइयों को दूर रखे, वो हिंदू है। केवल इतना ही नहीं, हमारे ऋग्वेद में विव हिंदू नामक के बहुत ही पराक्रमी और दानी राजा का वर्णन मिलता है, जिन्होंने 46,000 गौ माता दान में दी थी, और ऋग्वेद मंडल में भी उनका वर्णन मिलता है। बुराइयों को दूर करने के लिए सतत प्रयासरत रहने वाले सनातन धर्म के पोषक व पालन करने वाले हिंदू हैं। हिंदुस्तु दुरितामह, अर्थात हिंदू सब लोग सदा ही शुरू से रहे हैं और रहेंगे, तो दुरितामह। आप इसके बाद हम चलते हैं एक सुंदर सा गीत की ओर, और इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
1: राजेंद्र जी, सुंदर से गीत की ओर आगे बढ़ेंगे, पर आज बस यही प्रश्न है, क्योंकि हमारे साथ हमारे भाई रॉय जी जो आइंदहोफ शहर से यहाँ उपस्थित है स्टूडियो में है, और हम सब सूरीनामी है, तो क्या सूरीनाम हमारा प्यारा देश आप चलाने वाला है कि कार्यक्रम में हम लोग का बिल्कुल समय नहीं है?
0: नहीं नहीं नहीं, वो जरूर चलेगा, क्योंकि आज यहाँ पे तीन लोग सूरीनाम कहते, सूरीनाम हमारा प्यारा देश क्यों नहीं चलाया जाएगा
1: एकदम से
0: एकदम से। लेकिन उससे पहले कोई दूसरा गाना रहेगा, इसके बाद हो रहा
1: जरूर जरूर
0: जरूर।

0: तोरा मन दर्शन करवाए। बहुत ही अच्छा। मन दर्पण जो है, मन का दर्पण का मतलब होता है, दर्पण मतलब होता है शीशा, ऐना। और जब शीशा के सामने हम खड़े होते हैं तो हमारी ही शक्ल उसमें दिखती है। तो वैसे तो हम देख नहीं सकते अपनी शक्ल, लेकिन एक शीशा, शीशा मतलब दर्पण, जो सामने है वो दिखेगा। वही एक चीज़ है जो दिखा सकता है, दर्शा सकता है। तो अपने आप को अगर देखना हो तो शीशा में, वैसे मन दर्पण कहलाए। वैसे अपने आप आँख बंद करके अपने शरीर के अंदर जाके अपनी मन की आँखों को खोल के अपने अंदर देखा जा सकता है। तो इस प्रकार का जो मन का दर्पण है वो बहुत ही अच्छा है, वही दर्पण होना चाहिए। संजय जी, आप इसके बारे में कुछ कहना चाह रहे थे?
1: जरूर कहना चाह रहा था राजेंद्र जी, क्योंकि ऐसा हुआ कि एक बार एक व्यक्ति ने हमसे बोले
0: जी,
1: व्यक्ति ने बोले कि मेरे दादा ने, हम लोग कहते आ जाना,
0: हाँ,
1: दादा ने अपने कमरे से एक बड़का दर्पण लगाए थे।
0: हाँ।
1: उन्होंने कहा कि वो रोज बाहर निकल के अपने सभी कमरों में दर्पण लगाए थे, छोटे छोटे
0: जी,
1: पर अपने कमरे में एक इतना बड़ा दर्पण लगाए थे जिसमें वो पूरा शरीर दिखता था।
0: हाँ।
1: तो वो कह रहे थे कि मेरा दादा में ये था कि रोज वो बाहर जा करके जब लौट करके आए तो वो उसी दर्पण में देख करके अपने आप से ये प्रश्न करते थे
0: जी,
1: कि क्या हमने ठीक किया या क्या हमने गलत किया
0: जी।
1: तो उससे वो, उसे वो सीख मिलता था कि कुछ गलती हो जाता, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे कुछ गलती हो ही जाता है। उसी से वो अपना गलतियों को संभालते थे, कि क्योंकि वो रोज अपने आप को देख करके अपने आप में वो प्रश्न रखते थे, और प्रश्न रख करके और अपने आप में सुधार कोशिश करते थे रखने को। तो इसी प्रकार से वो अपना और बनाए थे। आगे के कार्यक्रम में जैसे कि मैं देख रहा हूँ तो शांता जी भी कुछ तैयारी करे हैं, और शांता जी आज मैं ऐसा आपके तैयारी के ओर नहीं जाऊँगा, पर एक ऐसा प्रश्न रखना चाहता हूँ आपसे।
2: मैं तैयार होकर आई हूँ।
1: पर शांता जी, कभी आपने किसी को सिर से चुरकी देखे?
2: हम बहुत ऐसे लोगों को देखती हूँ।
1: आप हमें देख रहे हो पर हमारे सिर से आप दिखाई नहीं देंगे।
2: चुरकी नहीं, राजेंद्र के सिर पर है चुरकी। एक ये कहते हैं पंडित जन को एक चुरकी ऐसे लगाते हैं ना।
1: हाँ जी। हाँ।
0: ये रहे नमन।
1: हाँ।
2: वही तो हम देख रहे हैं।
0: एंटेना।
1: एंटेना।
2: एंटेना। हाँ।
1: हाँ। तो क्या उसका मतलब आपको पता है?
2: हाँ, मुझे पता है। उसके बारे में खोजबीन की तो मुझे कुछ हासिल हुआ। तो आपने पूछे सही वक्त पर सही प्रश्न, तो उसके बारे में आप जानना चाहते हो?
1: उसी लिए तो ये प्रश्न को रखा गया शांता जी।
2: अच्छा, तो हम बता दें कि हिंदू धर्म में ऋषि मुनि सिर पर चोटियां रखती हैं, सिर पर चोटियां रखते हैं। आज भी लोग रखते हैं, वो तो सही। हम भी जब मंदिर जाते हैं या सड़क पर कहीं भी ऐसे व्यक्ति जो पास होते तो हम देख लेते हैं, तो जान पे पड़ता है कि ये कोई है। तो वैज्ञानिक तर्क ऐसा है कि जिस जगह पर चोटियां रखी जाती है, हाँ ये सिर पर ना, जिस जगह पर चोटियां रखी जाती है उस जगह पर दिमाग की सारी नसें आकर मिलती है, समझा?
1: तो उसी दिमाग, और आसान से कैसे आप कह सकेंगे
2: कि वहाँ पे नस जाकर जुट एकत्रित होते हैं,
0: इससे एकत्रित,
2: हाँ एकत्रित, एकत्रित।
0: हाँ, यानी कि
2: इससे दिमाग स्थिर रहता है और इंसान को क्रोध नहीं आता।
1: चुरकी रखने से क्रोध नहीं आएंगे अभी, ऐसा?
2: ऐसा। और उससे भी है कि आप अभी अपना इंद्रिय और जो भी है ना उसको भी काबू में रखें,
1: अपने आप के कंट्रोल में,
2: अपने आप को कंट्रोल में। हाँ, तो ऐसा है कि चुरकी के महत्व
0: बहुत ही विशाल महत्व।
2: हाँ, सोच और तो, सोचने की क्षमता भी बढ़ती है कि जो एंटेना है इसका मतलब क्या है।
1: आप भी चुरकी रखा है?
2: अभी राजेंद्र जी ने कहा ना उसका एंटेना है।
1: राजेंद्र जी, ऐसा क्यों, ऐसे करते क्यों, एक गीत के ओर बढ़ते हैं और गीत के बाद में फिर थोड़ा से सूरीनाम, हमारा प्यारा।
0: हाँ,
1: देश
0: जरूर, गीत के भी बहुत अच्छे बोल हैं कि यह है गीता का ज्ञान, वो जरूर हम बढ़ाएंगे।

0: बस मरने ही वाले हैं देवी, इनका अंत निकट है।
1: तथास्तु।
2: इन दोनों दुष्टों ने मिलकर कैसी चाल चलाई, एक कंस मामा बन बैठा एक दुर्योधन भाई।

0: दर्शनों को दुनिया तरसती है, स्वयं दर्शन देने आ रहे हैं।
1: पहुंचा हुआ है साधु, क्या क्या चमत्कार दिखलाए, बोली जनता बोली ईश्वर रूप बदल के आए।
0: ये जनता की भूल है देवी, ये महापापी है, घोर अपराधी है।
1: अच्छा,
0: वेद शास्त्रों की भाषा को ये ढोंगी क्या जाने, ये पूजा करवाए अपनी प्रभु को क्या पहचाने। ये साधु के भेष में डाकू रोज पखंड रचाए, ऋषियों को बदनाम करे, संतों पे दाग लगाए।

0: ये है गीता का ज्ञान।
1: गीता का ज्ञान अभी संजय जी आपने बड़ा ही अच्छा ढंग से सुना है, जो कि जिसकी फिल्म जो ऋषिकेश में बनी थी, और फिल्म में बहुत लोगों ने सराहा है उसको।

सूरीनाम हमारा प्यारा देश। तीन लोग आज यहाँ सूरीनाम के बैठे हैं तो उनका प्यारा देश इतना अच्छा है कि सब लोग एकदम झूम उठते हैं। अब बढ़ते हम आगे, लागी छूटे ना सनम अब तो, क्योंकि अब हमारा समय जो स्टूडियो से विराम की ओर बढ़ता है, तो चलते हम लागी छूटे ना सनम अब तो सनम।

लागी छूटे ना अब तो सनम चाही। ये जो जब ये गीत आता है, जब ये गाना बजता है, तो सब लोग और हम लोग भी यही देखते हैं कि अब हमारे श्रोता गण जो कि हमको इतने प्रेम से सुनते हैं, वो उनका भी मन कहीं ना कहीं इस गाने से ये लगता है कि हमारा पूर्ण कार्यक्रम पूर्ण की तरफ आगे हो रहा है, यानी कि और इस गाने से बहुत ही सबको और हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है कि लागी छूटे ना अब तो छूटना ही है। दोस्तों, सुनने वालों, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। सुनने वालों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि जो हमारा इतना प्रोग्राम सुनते हैं और पसंद करते हैं। फ़ोन भी आता है, मैसेज भी आते हैं, बहुत अच्छा, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।

0: जब से
1: जिंदगी दो पल की है, जिंदगी दो पल की है, मजे में जी लो, वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त की बात है यहाँ, इसलिए कल को छोड़ो आज में जी लो। प्यारे सुनने वालों, देने सुनने के लिए बहुत से धन्यवाद। जो हमसे अनजाने में गलतियां हो गई हो तो माफ़ी हम आपसे मांगते हैं। स्वीकार कीजिए सभी का शांता की प्यार भरी। राम राम, प्रणाम।

हौसला को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी के ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। फाहुन रेडियो के सभी सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम सब आज फिर और इकट्ठा होकर के कार्यक्रम को ज्योति का प्रकाश जो आपके लिए प्रस्तुत किया गया। आशा यही है कि अगले सप्ताह आप जरूर सुनते रहना। हमारे साथ सहयोग दिए शांता खिमाई जी, राजेंद्र सिंह जी जो पनेल के पीछे बैठे हुए हैं, और मैं हूँ आपका सेवक संजय। सभी को एक शुभ दिवस। नमस्कार।

और यहां से हम अपना कुछ प्यारे प्यारा प्यारे प्यारे लवली सॉन्ग भी आप लोग को हम सुनाएंगे। और कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, कहते हैं तू हजार बार भी रोते तो मना लूंगा तुझे, तू हजार बार भी रोते तो मना लूंगा तुझे, मगर देख मोहब्बत में शामिल कोई दूसरा ना हो। जब अगर मोहब्बत में कोई और आ जाएंगे तो कैसे मनाऊंगा। और कहते हैं कि किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, तड़प कर तू मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफा का वो इम्तिहान वो इंतजाम रह रही है। एक बार फिर दोस्तों, किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, तड़प कर या मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफा का वो इल्जाम दे रही है। दोस्तों हम चलते गीत की ओर कि बोल मेरे तकदीर में क्या है और मेरे हम सफर अब तो बता। और इस गीत को आओ मिलकर सुना जाए, प्यार भरी गीतों के बहार प्रोग्राम हम लेकर चलते हैं। मैथिली मुकेश नाइटिंगेल के लता जी इस गीत को गाया है, आओ सुना जाए।

तकदीर में क्या है और मेरे हम सफर अब तो बता। और फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता। दोस्तों जॉनी नंबर वन है, आप लोग को हम बता देते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है हर शुक्रवार को शाम को 6 से और रात्रि के 9 बजे तक चलते हैं। मंगलवार को दिन में 5 से 6 बजे लेक सुरिनामी न्यूज और रविवार की सोमवार को दिन में 1 बजे हमारा सुरिनामी न्यूज है दोस्तों। और आपको हम बता देते हैं कि लोग जो इसको मालूम नहीं है हमारा फ्रिक्वेंसी जो है हम सब AM पे अब नहीं है दोस्तों। दिस मीन्स दी डेंक ए हमारा रिवॉर्म कुछ भले नहीं मीन्स आज अंदेया बी प्लस रेडियो है दम पास क्वेंसी ऑन लॉइस्टर ऑफ अलेन ऑफ द इंटरनेट। और हमारा फ्रिक्वेंसी है 195.93 मेगा हर्ट्ज पर ऑफ नहीं कनाल 8A DAB प्लस रेडियो पर हमारा प्रोग्राम रेडियो फाहून के प्रोग्राम आप सुन सकते हैं, अपने गाड़ी में भी सुन सकते हैं दोस्तों। और हम कहते हैं यहाँ पर कि कहते हैं मरे तो लाखों होगे तुझ पर, मरे तो लाखों होगे तुझ पर, मैं तो तेरे साथ जीना चाहता हूं दोस्तों। मुझ पे पाने को मुझे पाने के तुम जिद ना करो, मुझे पाने का तुम जिद ना करो, किसी को चोरी हुई मोहब्बत हूँ मैं किसी की चोरी हुई मोहब्बत हूँ मैं दोस्तों। और यहाँ से हमारा प्यार भरी गीतों का और बाहर नामक प्रोग्राम हम चलाते हैं लाइव रेडियो फाहुन के माध्यम से हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और हम चलते हैं फिल्म ब्लैकमेल के ओर, हम चलते हैं पल पल दिल कोई पांच किशोर साहेब ने इस गीत को गाया है, आओ मिलकर सुना जाए।

पल दिल के पास सिर्फ तुम ही रहती हो। किशोर साहब ने इस गीत को सुनाया है, फिल्म का नाम है ब्लैकमेल। और दोस्तों कहते हैं जिंदगी के कुछ लम्हे, जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होते हैं, जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होती है, यादों में कुछ लोग खास होती है, यादों में कुछ लोग खास होती है। यूं तो वो दूर होता है नजरों से, पर उनकी एहसास दिल के पास होती है। प्यार करने वालों के लिए कुछ प्यार भरी शायरी आप लोग को हम सुनाते हैं कि तेरे हर नाकामी को कामयाबी में बदल दूंगी, तेरे हर सपनों को हकीकत में बदल दूंगा। ऐ दोस्त हम खुदा से दुआ ऐसी करेंगे कि तेरे हर गम को खुशी में बदल देंगे। कुछ प्यार भरी शेरें हम आप लोग को और सुनाते हैं दोस्तों। आओ चला जाए एक और गीत की ओर, और वो है और वो भी फिल्म हरियाली और रास्ता कहे जो नहीं का ये फिल्म है, मनोज कुमार और मालहा सिन्हा इसमें काम किया है। आओ चलकर और इस गीत को मजा लूटे।

चला हूँ और खुद उसके और क्या क्या प्यार भरी मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को और सेवा करेंगे। दोस्तों अपनों के बीच बेगाना हो गए हम, अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, प्यार का लम्हे अनजानी हो गए है। जहाँ पर फूल खिलते थे, जहाँ पर फूल खिलते थे कभी, आज वहीं पर वीरान हो गई है। ये बात है दोस्तों, जो शख्स तेरे तस्वीर से ही महक जाए, जो शख्स तेरे तस्वीर से ही महक जाए, सोचो तुम्हारे दिलार में उसका क्या होगा। हमारे प्यारे सुनने वालों, तो हम चलते हैं एक गीत की ओर, वो है कभी कभी का, फिल्म कभी कभी का ये गीत है, मैं पल दो पल का।

शायर हूँ और इस गीत के बाद में हम चलते हैं एक मोहब्बत भरी गीत की ओर। लोग बचपन पर बहुत प्यार किया है और जो बचपन पे किसी को प्यार किया है उस सब के लिए यहाँ पर एक शायर है, जिंदगी का पहला प्यार कौन भुलाता है, जिंदगी का पहला प्यार कौन भुलाता है, ये पहली बार होता है जब कोई किसी को खुद से बढ़कर चाहता है, उसकी पसंद उसकी ख्वाहिश मिल खुद से को भूल जाता है, अकेले में उसका नाम लिख लिख कर मिटाता है, दोस्तों बात करने से पहले सोचता है क्या कहना है, बात होने के बाद फिर भी कुछ रह जाता है, होता है खूबसूरत कितना पहला प्यार, होता है खूबसूरत कितना पहला प्यार, ना जाने क्यों अक्सर अधूरा रह जाता है पहला प्यार। तो सबके लिए यहाँ पर हम एक गीत को चलाते हैं कि बचपन का प्यार कभी भुलाना नहीं, आओ मिलकर सुना जाए।

और बचपन की मोहब्बत को दिल से दुआ करना। और दोस्तों, प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हमारा चलते हैं। और कहते हैं, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना है हमारे प्यारे दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने क्या था और मुझे हुआ था। उसने किया था और मुझे हुआ था। दिट इज गवेल्दिग मोई दोस्तों, कोर्ट मार हेल मोई। मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसे किया था, उसने मोहब्बत किया था और मुझे मोहब्बत हुआ था। हमारे प्यारे दोस्तों, ये सब प्यार भरी शायरे और आपको हम यहाँ से सुनाते हैं कि जाओ जाओ जाओ ढूंढ लो, हम सबसे ज्यादा चाहने वाला मिल जाए तो खुश रहना। जाओ ढूंढ लो, हमसे ज्यादा चाहने वाला मिल गया तो खुश रहना। ना मिली तो हम फिर भी तुम्हारी है। ये सब बातें हैं दोस्तों जो दिल को छू कर और निकल जाता है। हम चलते हैं एक गीत की ओर जिसमें शमी कपूर काम किया है, राइसी संगे पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये गाना है और ये है, ये गीत है, और मेरी मोहब्बत जवान रहेगी। मेरी मोहब्बत जवान रहेगी यानी कि मोहब्बत कभी बुढ़ाते नहीं है, उम्र चले जाते हैं दोस्तों लेकिन मोहब्बत जवान रहती है। ये हमारा पैगाम है रेडियो फोन के माध्यम से, आओ सुना जाए।

और दोस्तों मेरी मोहब्बत जवां ही रहेगी। और ये है परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत है और मोहब्बत भरी प्यार भरी लवली सॉन्ग यहाँ से हम और प्यार भरी खबरोगन सॉन्ग्स और कुछ यादें हम आप लोग को यहाँ से चलाते हैं कि कहते हैं समझाता ही नहीं वो मेरे अल्फाज की गहराई का, समझता ही नहीं वो मेरी अल्फाज की गहराई, मैंने हर लफ्ज का दिया जिसे मोहब्बत कहता है, मैंने हर लफ्ज कहा दिया कह दिया जिसे मोहब्बत कहता है। दोस्तों एंड ब्रोकिंग्स हार्ट शायरी यहां से हम आप लोग को एक दोस्त सुनाते हैं। तुमसे मोहब्बत तेरी औकांत से ज्यादा की थी, तुमसे मोहब्बत तुमसे प्यार तुमसे मोहब्बत तेरी औकात से भी ज्यादा की थी, अब बात नफरत की है सोच सोच तेरा क्या होगा। माना कि मुझे प्यार करना नहीं आता, माना माना कि मुझे प्यार करना नहीं आता, पर तू बता कि तुझे डील तोड़ना किसने सिखाई है। ये तो भी होता ना हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों रेडियो का। हम चलते हैं आशी जी के एक रोमांटिक सॉन्ग है परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत है और चला जाए फिल्म के नाम है प्यार का सौदा नहीं। दोस्तों प्यार का सागर फनी कति होंदत एन एनन सस्तक आओ चला जाए सुनने को कि मोहम्मद रफी और आशा भोसले क्या गाया है।

प्यार की जिंदगी देने वाली। दोस्तों कितने लोग कहते हैं, बोले जॉनी तू सिर्फ प्यार भरे गीतों को चलाते हैं, लेकिन हम अपने जिंदगी में बेवफा बहुत हमको मिला है और बेवफाई भी बहुत हुआ है दोस्तों। और जितने लोग बेवफाई के रास्ते से गुजरा है वो सब के लिए यहाँ पर हम कुछ बेवफा का शेर लेकर आया है और एक गीत भी लाया है। कहते हैं फिर से तेरे महफिल में चला आया हूँ, फिर से तेरे महफिल में चला आया हूँ, अंदाज वही है, अंदाज वही है, बस अल्फाज नया लाया हूँ, भूल तो जाऊँ तुझे दोस्तों। और कहते हैं भूल तो जाऊँ तुझे पर मेरे पास रहेंगे क्या कुछ, यानी कि बेवफाई का हम आपको शेर सुनाते हैं कि कितनी लोग बेवफा के रास्ता से भी गुजरा है, ठोकर लगा है, दिल टूट गया है, वो सब के लिए भी यहाँ पर हमने कुछ रखा है। अब जुदाई का सफ़र को मेरे आसान करो, अब जुदाई का सफ़र को मेरे आसान करो, तुम मुझे ख्वाब में आकर ना परेशान करो, तुम मेरे ख्वाब में आकर और ना परेशान करो। और तो क्या था बेचैनी के लिए अपनी आंखों के ख्वाब बेच आई है हमने। तो दोस्तों ये सब एक दो बेवफाई का गीत आपको हम सुनाते हैं, आओ सुना जाए।

और तेरा मासूम चेहरा भूल जानी को काबिल नहीं है। और दोस्तों मोहम्मद अजीज ने इस गीत को गाया है और कहते हैं, कुछ ऐसा हंसने भी जिंदगी में होता है, कुछ ऐसा हादसा भी जिंदगी में होता है कि इंसान बच तो जाता है मगर जिंदा नहीं रहता है। दोस्तों ये तो भी कभी कभी बात होता है ना कि प्यार में अब ये शामिल करना है, वो सच कहना है, वो सच कहे ना कहे हम अतबार करना है। तो ये सब बात है दोस्तों। इस गीत जो है, इस गीत को इस फिल्म में सुनील दत्त और माला सिन्हा ने काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए।

तुझको मेरा प्यार पुकारे, फिल्म के नाम है गुमराह। आशा भोसले महेंद्र कपूर का ये गाना है और म्यूजिक दिए थे रफी साहब ने। फिल्म का नाम था गुमराह। फन इकती होंद द्रियन शस्त्र जिस फिल्म में काम किया सुनील दत्त, माला सिन्हा। और दोस्तों और ये प्यार भरी गीतों का बहार सॉन्ग्स हम आपको सुनाया है। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और हमारा प्रोग्राम चलाना है, हमारा काम यही है, हमारा मोहब्बत भरी पैगाम। यहां से कुछ पुराने नगमे कुछ नए गाना से आज हम आप लोग को और सुनाएंगे। हम चलते तुरंत इधर चला मैं उधर चला, फिल्म के नाम है कोई मिल गया। ऋतिक रोशन प्रीति सिन्हा इस फिल्म में काम किया है, इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक। आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों क्या किया और क्या किया, आज हम आप लोग को कुछ नया और पुराने गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे दोस्तों। और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा एक गीत है जो नैतिल के लता जी और उदित नारायण को गाया हुआ गीत है। इस फिल्म का नाम है वीर जरा, शाहरुख खान और प्रीति सिंधा का ये गीत आप लोग सुना जाए।

इस है तेरा जितने लोग दुनिया पे है हमारे प्यारे सुनने वालों, अपना देश सबके प्यारा होता है, चाहे आप भारत में हो या सूरीनाम में हो या पाकिस्तान में हो या जहां भी हो, अपना देश सबका प्यारा है, चाहे वो देश आपका जैसा भी हो लेकिन तुम्हारा अपना ही देश है। और चलते हैं हम और आगे को, सातो जन्म में तेरा ही रहेगे। फिल्म के नाम है दिलवाला, कुमार शानू और अलका याग्निक इस गीत को गाते हैं।

सुनने वालों, सातों जन्म तक हम तेरे रहेंगे, ये क्या मुमकिन है? सात जन्म तक किसके साथ रहे? एक जन्म में भैया कहीं कहीं उल्टा सीधा हो जाए, सात जन्म में भला क्या होगा? सोचो तो, हम चलते हैं एक गीत की ओर। औ है खलनायक, खलनायक की ओर, और पलकी में होगे सवार, पलकी में होगे सवार। आओ सुना जाए।

बस पालकी में होके और सवारे चलिए। कल का यानी फिल्म का नाम है खलनायक, जिस फिल्म में माधुरी दीक्षित संजय दत्त ने काम किया है और गीत को गाया है अलका याग्निक। और हमारे प्यारे सुनने वालों, हमारे दोस्तों, यहाँ से प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हम चलाते हैं। अगर जब आप किसी के ऊपर दीवाना हो गया है, अगर जब किसी के ऊपर आप दीवाना या दीवाना हो गया है, दिल दे चुका है, तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। आओ देखो क्या है।

और ऐसी दीवाननी और तेरा नाम हमने लिख दिया अलका याग्निक और विनोद राठौड़ ऋषि कपूर देविया भारती का ये फिल्म है ऐसा दीवानी। फिल्म का नाम है दीवाना। और हमारे प्यारे सुनने वालों, आज हम आज कुमार शानू के गीत भी आप लोग को सुनाएंगे और वो है ये चांद कोई दीवाना है, ये चांद कोई दीवाना है, ये भी कुमार शानू और अलका ने इस गीत को गाया है।

चांद कोई दीवाना है और ये चांद कोई दीवाना है। छुपा रुस्तम फिल्म का नाम है और इस गीत को हमने अपने प्यारे लोगों के लिए चला दिया है। मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को फिर कुछ मनोरंजन को आप प्राप्त करेंगे। और हम चलते हैं, कोई पागल प्रेमी होता है भैया, कोई श्रेक होता है और कोई पागल होता है। कविता कृष्णमूर्ति का और सबीर कुमार का यह गीत है जिस फिल्म में गोविंदा ने काम किया है और देविया भारती ने। और इस गीत को बोल है तू पागल प्रेमी और आवारा।

दोस्तों, और ये गीत क्या होगा दोस्तों, ये कुछ प्यार भरी गीत है और ये गीत है झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल। झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल की ओर हम जाते हैं।

तेरी कमाल और इस गीत को अलका याग्निक ने और उदित नारायण ने और यानी कि गाया है और फिल्म के नाम है राजा। मधुरी ऋषि संजय दत्त का ये फिल्म है दोस्तों।

ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं तिक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद

सुनने वालों की सेवा में मैं संजय आपके साथ जुड़ गए हैं। जो बीमार है, लाचार है, भगवान से विनती प्रार्थना किया जाता है कि स्वस्थ में परिवर्तन आवे। जिनके घर से नया शिशु ने जन्म लिया है परिवार में, तो उन्हें बहुत बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनके जन्म घाट आज जन्मदिन है, उन्हें बहुत सा बधाई भी दिया जाता है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी की ओर बढ़ने के लिए, तो आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत किया जाता है। और हर बार की तरह इसको भाई दोहरा देता हूं, महात्मा गांधी जी ने इस बात को कहे थे कि ये मत सोच कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ये सोच कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं। तो मां सरस्वती को भूलना नहीं। बुद्धि और ज्ञान का भंडार देने वाले माँ सरस्वती या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपे न संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।

जो हमारे देश में सफर करने को आए हैं मत फकांसी। तो मैं आपको हार्दिक से स्वागत करता हूं और ये कहना चाहूंगा कि ये देशों में एक देश है जिसे हम स्वर्ग भी कह सकते हैं। आप ना सिर्फ अपने परिवार के साथ पर यहां जितने भी लोग रहते हैं हॉलैंड अ ब्यूटीफुल कंट्री, एक देश जहां कितने सारे मंदिरों है, सबसे ज्यादा वही जहां जहां सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी रहते हैं और सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी रहते कहां हैं? कहा जाता है कि तनहाक शहर मिलेंगे मंदिरों जैसे देव मंदिर खासलान में, जो हर रविवार को और होते दाखों पे लगते रहते हैं। जरूर ये कहना चाहूंगा कि दर्शन करके जाना, जो हर रविवार 2 बजे से 5 बजे तक रहता है, कुछ न कुछ कार्यक्रम रखा जाता है। राधे कृष्ण मंदिर यनफा हो इस रात तनहाक शहर से, कार्यक्रम हर मंगलवार को 5 बजे से 8 बजे तक रहता है। इसी प्रकार से मंदिर सेवा धाम तनहाक शहर

शायद आप रोटरडम शहर में रहते हैं तो वहां भी शिव मंदिर नौसमान सरात। हर रविवार को सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक इसी प्रकार से राम मंदिर रोटरडम। नंदा देवी मंदिर अगर आप सुतमेर के निवासी हो तो सुतमेर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो प्रिश्मालान में है। सुतमेर में हर मंगलवार को और आप जा सकते हैं, वहां का कार्यक्रम जो 6 बजे से 9 बजे तक होते हैं।

और कहा जाता है कि अगर आप दूर शहर का निवासी हो, जैसे कि अलमीर, तो श्री विष्णु मंदिर, जो यूरोपा का और सबसे सुंदर मंदिर कहलाते हैं, के अन्य देशों में से आकर के वहां दर्शन करते हैं। अलमीर का श्री विष्णु मंदिर, जो कि हर रविवार को 2 से 6 बजे तक

इसी प्रकार से हम उनका देश में धार्मिक स्थानों भी एक दो है। कुछ ऐसा संस्थाओं भी है कि हमारे पुरखों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे कि एकता, एक संस्था जो 50 साल से भी ज्यादा

संस्था जैसे हिंदू परिषद नीदरलैंड, संस्था जैसे हिंदी परिषद नीदरलैंड जो कुछ 40 साल से भी ज्यादा एक संस्था जहां पर हिंदी का आपको सिखाया गया, लिखाया गया, पढ़ने पढ़ाने एक संस्था जो गर्व के साथ कह सकते हैं कि मेयर दान 12,000 सर्टिफिकाट uitgeschreven. सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं. एक देश जहां पर पार्थिव लिंगम पूजन भी किया जाता है हर गर्मी महीना में. उसी में ये मैं जोड़ देता हूं, गर्मी में जब श्रावण मास आता है तो कितने मंदिरों में श्रावण मास पूजा खूब विधि विधान से किया जाता है, जरूर उसमें भाग लेना. सुनने वालों, मैं आपके साथ जुड़ा हूं सुबह का औक्तन भजन प्रोग्राम जहां से दनाख मैके इस्त्रात सेस हिंदू बास स्कूल फाउन फरेनखिंग अलगमीन हिंदू अंदरवाइज की ओर से सभी बच्चों, सभी सदस्यों, सभी अंदरवाइजर्स और सभी दिरक्षी लेदे के ओर से एक सुंदर सा भजन की ओर हम बढ़ते हैं.

इतिहास के हर पन्ने पर लिखा है कि दोस्ती कभी बड़ी नहीं होती, निभाने वाला हमेशा बड़े होते हैं। ये सुंदर सा भजन जो हम सब चलाए गए हैं, फाहुन सोल जो तनहाख मैकेंसरात नम्रोसेस हिंदू बासस सोल फाहुन फरीन खिंग अलखमीन हिंदू अंदरवाइस की ओर से।

कहते हैं कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छे होने में समय नहीं लगता है। तो दोस्तों, आज अपना समय पे भी ध्यान देना। क्योंकि समय जिसे हम जानते हैं काल से, बहुत बलहारी कहलाते हैं। रुकने वाले नहीं हैं। उसे आप प्रियोर्स भी नहीं कर सकते हैं। जिसे हम कहते कि हम उसे पिछाड़ भी नहीं कर सकते हैं। तो समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छे होने में समय नहीं लगता है।

अगला भजन को स्पॉन्सर करने वाले हैं लिफोर्नो मेनकंदम हुक इंदिरा गांधी वेख श्री भक्त राज शिव पार्वती मंदिर, जिनके अगर आपको वहाँ मालूमात करना है तो भाई सुहास महावीर से जरूर आप संपर्क कर सकते हैं। जिनका तार का नंबर 00590 5 6 5 8 7 7। एक सुंदर सा भजन उनके ओर से।

दोस्तों कहते हैं कि ये रिश्ते भी अजीब होते हैं। ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते हैं और बिना धोखा से खत्म नहीं।

जरूर ध्यान देना, अगर कोई विश्वास आप पे रखते हैं। नीदरलैंड्स में ये कहा जाता है, आप खुद समझदार हैं और समझ गए होंगे।

सुंदर शाह भजन का स्पॉन्सर करने वाले रोटरडम होफ्लीट टेक्सस वेग 5 श्री विष्णु मंदिर संस्था हिंदू सेवा संघ संस्था जागृति श्री गंगा माता मंदिर रोटरडम वेस्ट ब्लॉक माकर स्ट्रात 46 से श्री सरस्वती माता स्कूलन कॉम्प्लेक्स भवन से ऑन द लीडिंग फन पंडित मंडली सभापति पंडित राजकुमार महातम जी के ओर से ये सुंदर सा भजन को हम सब सुनें।

जिनके नाम से रातों में भी उजाला हो जाए। ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम आपको सपनों में भी आए और कृपा बरसाए। प्रभु श्री राम, जय श्री राम।

जो दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरित होते हैं, वे अपने भीतर की दीपक को प्रज्वलित करता रहते हैं।

सफलता समीप्त नहीं होती। सफलता समीप्त नहीं होती, वे एक दीप से दूसरे दीप तक जलती ऊर्जा है। हमारे अगला भजन जो कि फावन के डायरेक्शन और क्रू के ओर से चलाया जाता है, हमारे डायरेक्टर कुमार घेराव जी, जॉनी सुरुजबाली जी, शांता खेमाई जी, राजेश बदलू जी, राजन द्वारका जी, प्रदीप फेराई जी, विजयंती नाथू जी, रोसिता गिरजा सिंह जी, श्रीमान सुरेन जी, बबली आसरा जी, अमित अवतार जी, रोमियो होस्ट, संजय करण सिंह जी, गंगा जी, यूसुफ जी, मफरो रहीम बख्श जी, श्याम पूरन जी, अनुराधा चंदर जी और राजेंद्र सिंह जी की ओर से एक सुंदर सा भजन।

ए रब, मेरे दुआओं में असर इतना रहे, मेरे चाहने वालों का दामन हमेशा खुशियाँ से भरा रहे। ये सुंदर भजन जो चलाया गया फौहन के दिरक्सी और क्रू के ओर से, श्रीमान कुमार घेराव जी, जॉनी सुरजबाली जी, शांता खेमाई जी, रजेश बदलू जी, राजन द्वारका जी, प्रदीप फेराय जी, विजंती नाथू जी, रुसीता गिरजा सिंह जी, सुरेन भगवान जी, बबली आसरा जी, अमित अवतार जी, रोमियो होस जी और संजय करण सिंह जी, गंगा जी, यूसेफ जी, मफरू रहीम बख्श जी, श्याम पूरन जी, अनुराधा चंदर जी, राजेंद्र सिंह जी और हैन के ओर से ये सुंदर सा भजन जो चलाया गया। आशा ये रखता हूँ कि आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत हुए यहाँ से कार्यक्रम जो दूसरा मोड़ दिया जाता है। सभी को एक शुभ दिवस।

मैं चली रफी जी और लता जी की आवाज में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने सुनवालो। दोस्तों, एक अच्छे और एक बुरे दिन, एक अच्छे और एक बुरे दिन में बस एक ही अंतर है, वे है कि आपके नजरिया, आपके नजरिया, बस यही अंतर है। और उस पे हो सके तो जरूर काम करना, क्योंकि बुरे दिन बताकर नहीं गाते हैं,

तो कहा जाता है कि भरी बरसात में तो पी लेने दो और हमें जीने दो, पर ये बात में मत रहना, क्योंकि कहा गया है कि आज तक किसी जो पीने में दिल रखे है क्या कभी छोड़ पाए है। तो दोस्तों, कुमार शानू और रूप कुमार के आवाज में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने, और देखा जाए कि आज एक शुभ दिवस आपके प्रस्तुत हुए। और ये मत भूलना कि अगर आप जो फिल्म शोले भी देखे होंगे, तो उसमें जब अमिताभ बच्चन अपना दोस्त धर्मेंद्र जी के लिए उनके हाथ मांगने के लिए मौसी के पास पहुंचे, तो मौसी से सब अच्छे अच्छे बातें और कर रहे थे अपने मित्र के लिए, पर उसमें एक संदेश जो जावत अफ्तर का और सलीम जी का लिखा हुआ डायलॉग्स में से मौसी जी के आवाज में हम सब सुने कि आज तक किसी का जुआ और ना किसी का दारू छूटा है। तो इस पे ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि दारू पीने वाले भी हर बार अगर कुछ दिनों के लिए छोड़ने की भी कोशिश में रहते हैं, तो औरों को बार बार सुनाते रहते हैं कि भाई मैंने तो छोड़ दिया, और चाहे आप उस पे ध्यान ना दो, फिर भी वो आपसे इसी इशारा करते रहते हैं कि मैंने छोड़ दिया है। दोस्तों, एक अगला सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ते हैं।

रहमान के आवाज में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने, मसाक अली, जो फिल्म में काम किए हैं अभिषेक बच्चन और सोनम कपूर। फिल्म दिल्ली 6 से निकाला गया ये सुंदर सा गीत।

और ये कहना चाहूंगा कि क्यों ना थोड़ा सा अलग बने, क्यों ना थोड़ा सा अलग बने, खुश रहने की सलाह ना देकर खुश रहने की वजह बने। क्योंकि सलाह देने के लिए तो बहुत होते हैं, पर खुश रहने की वजह बहुत कम है।

की हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। जैसे कि अभी आपने सुने कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है।

पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, बस इतना ही जिंदगी का सफर है दोस्तों। और जो कभी कुछ आप पा गए,

होने का डर, क्योंकि कहा गया है पा लेने का बेचैनी और खो देने का डर। हम इसी में लगे रहते हैं, बस इतना ही जिंदगी का सफर कहलाते हैं।

नुसरत और राहत फतेह अली खान के आवाज़ में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने। दोस्तों, कहा जाता है कि पत्तों ने रंग बदला और वो गिर गए, पत्तों ने रंग बदला और वो गिर गए, वरना पेड़ को संभालने में कोई दिक्कत नहीं थी।

सिंह चड्डास फिल्म से निकाला गया ये सुंदर सा गीत, और जो अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने इस अपना आवाज़ दिए, फिल्म में काम किए हैं आमिर खान और करीना कपूर।

दोस्तों, ज़िंदगी जीने के लिए अनेकों तरीका क्यों ना हो, जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, और क्यों ना अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को संतुष्ट मिले और दूसरों को कष्ट ना पहुंचे। ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, तबलास्त्रन फिया इंटरनेट। दुनिया के हर एक देश में इसे सुना जा सकता है।

कहते हैं कि जीवन में एक बात तो तय है, जीवन में एक बात तो तय है कि हमारे अनुसार तय कुछ भी नहीं है, और जो तय है उसका हमें आभास भी नहीं है।

अपना बनाने की कसम खाई है, और जो कसम खाया जाता है तो वो ऐसा वैसा चीज नहीं है जिसे शायद आप सोचे कि कसम खा लिए है और चलो उसे भूल जाना। क्योंकि ना संघर्ष खत्म होता है और ना शिकायतें, ना संघर्ष खत्म होता है और ना शिकायतें। एक चीज तो जरूर है कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है हमारी उम्र। धीरे धीरे जो खत्म हो रहे है वो हमारे उम्र है। आज कुछ पुराने गीत और कुछ 90s के रोमांटिक सॉन्ग के साथ मैं आपके साथ जुड़े रहे। यही आशा लेकर कि जरूर कुछ न कुछ इसमें से आपको अच्छा लगे होंगे।

को गिराते हो किस लिए, दिल को मुझसे आंख चुराते हो किस लिए, अब हसरतों का खून बहाते हो किस लिए, पहलू से उठ के तुम चले जाते हो किस लिए, मेरे हाथ

मायल तुझको परवाह नहीं गम की हो कोई या कुछ भी हसर से गम नहीं ये तेरे सारे कातिल निगह नाज से हर एक हुआ है बिस्मिल चाल से अपनी मैशन बपा कर चले दिल नानी गाह आज ला कर

अच्छा न किया आपने अच्छा न हुआ मैं। अब जब कहा ढूंढ लूं पत की दवा मैं, क्यों कर न जहर पीलू सितमगार बता मैं, रस में उल

याद करने वाले और अपनी जिंदगानी बर्बाद करने वाले नालों से खुश दिलों को नाशाद करने वाले माशूक बेवफा को वो याद करने वाले मैं भी

मैं नगर नगर और डगर डगर इश्क की आग लगाती चली। मेरा देश गयो, मेरा पेश गयो, मेरा चैन गयो, मेरी नींद गई। मैं तो इश्क की आग मैं पूरी जली और दिन की बीनी को कांध धरी। कल में कि भभूति को मुंह पे मली और तौबे की तुम भी को हाथ मिली। यही कहती चली मैं।

हर किए की मैंने सजा उठा ली, आकाश की नजर कुछ अंजाम पर न डाली। अब याद कमा हुई हूँ दर पर तेरे सवारी, दामान यार क्या अब भी रहेगा खाली।

सिवा किसी की सब मुझको जुस्तजू है, हर दम मेरी जबां पर तेरे ही गुफ्तगू है। हो जाएगी वो पूरी जो मेरी आरजू है, तुझसे ही मांगने में अब मेरी आबरू है। चाले से अब मैं

दरबार सुस्त पाकर क्या जाऊँ हाथ खाली, मायूस हो हवा कर क्या जाऊँ हाथ खाली, अब शेर दर पे आकर क्या जाऊँ हाथ खाली, उम्मीद दिल में लाकर क्या जाऊँ हाथ खाली, अपनी मुरादें लेके चलूंगी

बशर की बिगड़ी हुई बनाई, बट्टी हथेर दर से मखलूक को भलाई, और बस में जब कुदरत आशान किबरियाई, किस्मत से हो गई है दर तक तेरे रिसाई, खाली नहीं तेरे दर तक फिरूंगी।

मेरे दिल में समा जाओ सुंदर सा राधा मोहन के ये भजन आपके लिए प्रस्तुत हो रहा है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य स्वयं बनाता है। कहते हैं भी कि आज आप जो कर रहे हो, आज जो आप कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है, आज जो आपका भाग्य है वो

अच्छा बुरा कर्मों का दोनों का हिसाब चुकाना पड़ता है। तो कोशिश करें हम अच्छे ही अच्छा करें। अच्छा कार्य करेंगे तो उसमें मुस्काएंगे, बुरा जो होएगा तो वो रुलाएगा।

सुंदर, अति सुंदर ये भक्ति भजन कार्यक्रम यहाँ से जो आपके लिए प्रस्तुत हो रहा है, हम इसमें गोटा लगाए और अपना जीवन जो है आज जो मिले हमें देखने के लिए, इसमें जरूर से हम कुछ अच्छे नया कार्य करें, अपना जीवन जो है सफल बनाए। भक्ति बुद्धि से होती है मेरे प्यारे सुनने वालों, भक्ति बुद्धि से होती है तो जुबान, जो जुबान है वो सुधरती है, लेकिन जब भक्ति दिल से होती है ना, तो कर्म हमारा जो है वो सुधरता है। छोटा बड़ा अपना पराया, छोटा बड़ा अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा और तुम सबके हो। सुबह की हर किरण तुम्हारी, सुबह की हर किरण तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, हर नया दिन, हर नया दिन तुम्हारी जिंदगी में खुशी।

ये सुंदर सा सुंदर अति सुंदर भजन राधा कृष्ण के यहाँ से हम श्रवण करते हैं और ये म्यूजिक भी जो है इससे हम सब प्रफुल्लित होते हैं, झूमते हैं, झूमते झूमते मुस्कान चेहरे पे लेते ये दिन के शुरुआत करते हैं। तो दिन जो है ना आगे वाला दिन भी शाम होगे रात होगे ये सब हसीन हो जाएगा। प्रेम का वास्तविक अर्थ है सभी मनुष्य और प्रकृति के सभी प्राणी जीव मात्र के प्रति करुणा होना। Zoals lief zijn voor uw eten, lief zijn dat u loopt op een mooie pad, lief zijn en dankbaar zijn dat we een frisse zuurstof hebben, dat we die kunnen inademen om ons aan de stap te zetten. कहता है कि जिसका जैसा चरित्र होता है ना उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी तब पवित्र होता है। नई सुबह का उजाला तुझ में हौसला भर दे, नई सुबह का उजाला तुझ में हौसला भर दे, हर कदम पर जीत का सफर तुझे नई, हर कदम पर जीत का सफर तुझे नजर कर दे, नई और नजर कर दे।

सोलफुल महादेव भजन आपके लिए। जिंदगी जीने के बहुत से तरीके हैं, वाकई में कि जिंदगी जीने के लिए बहुत से तरीके हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है, सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को संतोष मिले और दूसरों को कष्ट ना पहुंचे।

नाम ले आए, दिल को प्यारी सी मुस्कान दे जाए। हर दिन तुम्हें इतनी खुशी मिले मेरे दोस्त, हर दिन तुम्हें इतनी खुशी मिले कि जिंदगी तुम पर फिदा हो जाए।

शिव मेरे है और मैं शिव का हूँ। ये दो तीन लाइन अच्छे है, इसे हम सुने कि फूल दोबारा कभी नहीं खिलता, फूल कभी दोबारा नहीं खिलता, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता, मिलते हैं लोग हजार के मिलते हैं लोग हजार मेरे दोस्त, पर हजारों गलतियां माफ करने वाला माँ बाप नहीं मिलता।

अवश्य ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे, और वो पर्वत जो है वो हमारा दिल है, उसी में हम ज्योत जलाए। खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। मेरी एक ही दुआ प्रार्थना है कि आप जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे।

गणपति बप्पा मोरिया सुना दी हमको फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जिस पर आप और मैं चून हूँ। ईश्वर करे कि आपकी हम सभी की जिंदगी सुकून से भरी रहे, आपका शरीर हम सबका शरीर स्वस्थ रहे और मन हमेशा खुश रहे, बल्कि जीवन का सबसे अच्छा योग क्या है तो यहाँ से हम बता देते हैं आपको कि जीवन का सबसे अच्छा योग एक दूसरे का संयोग है।

प्रयागराज के ये सुंदर सा भजन श्रवण हमने कर ली है। जीवन के सबसे महंगी चीज क्या है? जीवन के सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान। वर्तमान यानी कि आज इस पल ये वक्त जो है। जीवन का सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। और ये एक बहुत सुंदर लाइन है कि जिन्हें याद करने से दिन अच्छा और सुबह खूबसूरत हो जाए, ऐसे कुछ एक लोग ही होते हैं। ऐसे ही एक लोग ही होते हैं, कुछ ऐसे ही लोग होते हैं हमारे जीवन में। और वो कौन है? हाँ,

คุณฮารินารายณ์ฮารินูฮัดบลีฟต์อันมวยพจน कहता है कि जो चीज गलत है वो गलत है चुप रहकर कायर बनने से बेहतर है कि बोलकर दूर बन जाओ और ये भी बहुत सुंदर लाइन है सत्य वचन है दोस्त कि ये जरूरी नहीं है कि हर रोज मंदिर जाने से इंसान धार्मिक बन जाए सुनिए लेकिन कर्म ऐसा होना चाहिए कि इंसान जहां भी जाए मंदिर वही बन जाए

सुन रहे हैं फानिस्तानी रेडियो और यहाँ से हम सुनेंगे मिलकर फिल्म वीर जरा से निकाला गया ये सुंदर सा गीत कि मैं यहाँ हूँ।

जरा से जो सुंदर सा गीत निकल गया कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। अब देश मोय फ्रुख मेदाख कानी अब्सोलुट सेखन एक दो हेत लेकर ओप मेन गमाक एन दात माख एन टेंसलोते एट इस योर दाग।

फिल्म ताल के टाइटल सॉन्ग हमने सुने अलका याग्निक उदित नारायण जी के आवाज में। सो बी हैप्पी दैट्स व्हेन अदर लुक एट यू, बी हैप्पी व्हेन दैट अदर लुक एट यू, दे कम आल्सो हैप्पी टू।

हो तो जीना, तो जीने की हुनर रखना हमें ज़रूर चाहिए, कि ज़माने में आई हो तो जीने का हुनर रखना।

विक्की की आवाज में हम सब मिलकर सुने सुने वालों, और फिल्म का नाम है जन्नत। फिल्म जन्नत से ये सुंदर सा गीत निकाला गया है, और वो कुछ सोचूं तो तेरा ही ख्याल आता है, कुछ सोचूं तो तेरा ही ख्याल आता है, कुछ बोलूं तो तेरा ही नाम आता है, कैसे छुपाऊं अपने दिल की बात को, कैसे छुपाऊं अपने दिल की बात को, तेरी तो हर बात पर मुझे तो प्यार आता है।

यहाँ से एक बार फिर हमने साथ में मिलकर सुने के आवाज में फिल्म के नाम भूल भुलैया, भूल भुलैया से जो हमने यहाँ साथ मिलकर सुने। तमन्ना है मेरे मन की, तमन्ना है मेरे मन की कि हर पल साथ तुम्हारा हो। जितने भी सांस चले मेरी जान, जितने भी सांस चले मेरी, हर सांस पर नाम तुम्हारा हो। दिल से प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, दिल से निभाएंगे जब तक जिंदगी है, जब तक जिंदगी है मेरी जान, तुमको ही चाहेंगे।

इस बार हमने सुने अरिजीत सिंह जी की आवाज में जालिमा। दिल कहता है चुरा लूं तुझे तकदीर से, दिल कहता है कि चुरा लूं तुझे तकदीर से, क्योंकि दिल नहीं भरता है तेरी तस्वीर से। मोहब्बत का कोई रंग नहीं होता, मोहब्बत का कोई रंग नहीं होता, फिर भी वो रंगीन है। प्यार का कोई चेहरा नहीं होता, प्यार का कोई चेहरा नहीं होता, फिर भी वो हसीन है।

0: साथ में मिलकर सुने को सोनू निगम और श्रिया घोषाल के साथ में कि मैं अगर कह दूं हमारी आंखों में तुम हो, हमारी आंखों में तुम हो, दिल में तुम्हारी तस्वीर है, तुम्हारे लिए दिल तो क्या, तुम्हारे लिए दिल तो क्या, जान भी हाजिर है। कितना प्यार करते हैं हम तुम्हें, कितना प्यार करते हैं हम तुमसे, ये कहा नहीं जाता, ये कहा नहीं जाता, बस इतना जानते हैं मेरी जान, बस इतना जानते हैं मेरी जान कि तुम्हारे बिना अब रहा नहीं जाता।
1: लत मोहे ऐसी लागी

साथ मिलकर सुने कैलाश खैर की आवाज में, तुम पूछ लेना सुबह से, तुम पूछ लेना सुबह से, यकीन ना हो तो पूछ लेना शाम से, ये मेरा दिल धड़कता है, ये मेरा दिल धड़कता है तो सिर्फ तुम्हारे नाम से।

इस बार हम साथ में मिलकर सुने अलका याग्निक जी से और कुमार शानू जो साथ में मिलकर हमको ये सुंदर सा गीत सुनाए। हमारी गलतियों से कभी टूट न जाना, हमारी गलतियों से कभी टूट न जाना, हमारी शरारत से रूठ न जाना, हमारी शरारत से रूठ न जाना। तुम्हारी चाहत ही हमारी ज़िंदगी है, तुम्हारी चाहत ही हमारी ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कभी हमें भूल ना जाना।

से प्यार हुआ है अलका याग्निक और उदित नारायण जी की आवाज में हम मिलकर सुने सुने वालों की तुमसे बस प्यार हुआ है।

हम सब मिलकर सुने आशा भोसले जी की आवाज में फिल्म का नाम ताल। इसमें संगीत दी है आर डे बर्मन साहब जी ने।

चुरिया चुराना ये दिल, जो हम सपने सुने सुने वालों, और ये सुंदर सा गीत निकाला गया है कुली नंबर वन से। और हम देखें तो इसमें जो अपना गीत का आवाज जो गाए है अभिजीत और चंदना दीक्षित जी ने,

और यहाँ से हम मिलकर सुनेंगे कि इश्क बिना, हाँ जी इश्क बिना सुनेंगे हम, फिल्म ताल से निकाला गया है ये सुंदर सा गीत।

आर रहमान के साज और संगीत में जो सुनने वालों हमने सुने ये सुंदर सा गीत उदित नारायण और सपना मुखर्जी की आवाज़ में

life kya hai aur art of life kya, path aur earth. Zindagi mein mushkilon ka aana, zindagi mein mushkilon ka aana part of life hai, aur unse hans kar bahar aana art of life hai. खुश रहने के मूल मंत्र सुनिए जी. जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं चाहिए, जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं चाहिए. जो पछता नहीं वो खाना नहीं चाहिए, जो सुनता नहीं उसे समझाना भी नहीं चाहिए. जो सत्य पर भी रूठे, जो सत्य बोलने पर भी रूठे तो उसे मनाना नहीं चाहिए. जीवन में तकलीफें आए तो घबराना नहीं चाहिए. मौसम की तरह जो दोस्त बदले उसको भी बनाना नहीं चाहिए.

ट्रेजेडी ऑफ लाइफ फिल्म सूर से निकाला गया है। महालक्ष्मी आयर से सुने वालों हमने सुने कि कभी शाम ढले तो दिल में आ जाना। जो बदल जाए वो प्यार कैसा, जो बदल जाए वो प्यार कैसा, जो छोड़ जाए वो साथ कैसा, जो बदल जाए वो प्यार कैसा और जो छोड़ जाए वो साथ कैसा।

आज कल में ढल गया, अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी बेटी बेटे से हमने पेश किए हैं जाने कहाँ गए दो वो दिन फ्रॉम द मूवी मेरा नाम जोकर से आप सुनेंगे।

जी ना यहाँ मन्ना यहाँ भी आप सुन रहे थे और जाने कहाँ गए वो दिन फ्रॉम द मूवी मेरा नाम जोकर से हमने पेश किया है सुनने वालों। भरी दुनिया में आखिर दिल मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी दो बदन से।

भरी दुनिया में आखिर दिल, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में। एक बहुत सा सुंदर गीत हम आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में। फ्रॉम द मूवी दो बदन से आप सुनेंगे, राह गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा।

0: रागर डिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती कभी खो गया किनारा। भी आप सुन रहे थे सुनने वालों फ्रॉम द मूवी दो बदन से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफ़ी आपको सुनाने वाले थे। जबकि बारिश का मौसम है तो इस बारिश के मौसम में हम पेश करते हैं ये सॉन्ग आप सभी के वास्ते रफ़ी जी के साथ में। लता जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं कुछ कहता है ये सावन क्या कहता है।
1: Peace, oak, bewust.

रफ़ी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है। ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। कहीं एक हंसी ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। कभी खो लिया कभी पा लिया, कभी रो लिया कभी गा लिया। कहीं रहमतों की है बारिशें, कहीं तिश्नगी बेहिसाब है। कहीं छाँव है कहीं धूप है, कहीं और ही कोई रूप है। कहीं छीन लेती है हर खुशी, कहीं मेहरबान बेहिसाब है। ये ज़िंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। छुप गए सारे नज़ारे, ओए क्या बात हो गई।

छुप गए सारे नज़ारे और क्या बात हो गई, अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों। तेरे चेहरे की वो खूबसूरत तस्वीर कहाँ से लाऊं, हर लम्हा तेरे साथ गुजरे ऐसी तकदीर कहाँ से लाऊं, मैं मांगता हूँ हर सफ़र में साथ तेरा, तू ही बता मेरे हाथों में वो तकदीर, यानी तू ही बता मेरे हाथों में वो लकीर कहाँ से लाऊं। शांता खेमाई जी जो हमारे साथ एक कर्मचारीगण भी है, वो भी ये प्रोग्राम को सुन रही है, तो शांता लीजिए आप ही के नाम ये सॉन्ग हम पेश करते हैं जबकि बारिश का मौसम है।

0: पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, भी आप सुन रहे थे मुकेश जी के साथ में, लता जी आपको सुनाने वाले थे। और ये गीत खास करके हम पेश कर रहे थे अपने साथी कर्मचारीगण शांता खेमाई जी के वास्ते। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं। सुनने वालों, मिलन है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं सावन का महीना, पवन करे शोर।
1: Mm-hmm.

सावन का महीना पवन करे शोर अभी आप सुन रहे थे। फ्रॉम द मूवी मिलन से हमने पेश किए हैं सुनने वालों, लोफर है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में आज मौसम बड़ा बेईमान है।

अभी आप सुन रहे थे बरसो रे मेघा मेघा। चलिए ये सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, मिलकर सुनते हैं।

0: Goedemorgen, dames.
1: Witte eieren zijn al duurzamer, maar die van Kipster helemaal. Bijvoorbeeld omdat de kippen voer eten met overgebleven brood van Lidl.
2: प्रोग्राम को हम आगे में जारी करते हैं सुनने वालों और ये सुंदर सा सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते चलिए मिलकर सुनते हैं
3: और शहीद शेख के फैन काफी एक्साइटेड
4: फैंस को दोनों की जोड़ी काफी पसंद थी और हाल फिलहाल खबरों के मुताबिक दोनों ने ब्रेकअप कर लिया
5: मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं
6: लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं

बरसात के मौसम में नाजायज़ है फिल्म का नाम इसी फिल्म से आपको सुनाने वाले हैं कुमार सानू और रूप कुमार राठौड़ जी।

0: अभी आप सुन रहे थे बरसात के मौसम में, कुमार शानू और रूप कुमार राठौर आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी नाजायज। सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन।
1: आओ एक भीगी हुई सी कहानी सुनाता, जब आसमान से बूंदे नहीं मोहब्बत बरसे, बरसात ने ऐसी धुन छेड़ी जिसके लिए जिंदगी सदियों बरसी थी।
2: अरे सुन सुन।
3: यस मां।
2: एक बहुत अच्छा रिश्ता आया, ये फोटो देख ले, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है।
3: मां मैं बाद में देखूंगा, बहुत लेट हो रहा हूँ।
2: अरे सुन सुन।
3: बाय बाय।

जुबिन नौटियाल जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन टिप टिप बरसा पानी।

टिप वर्षा पानी अभी आप सुन रहे थे। मैं तो दीवाना हो गया पहली बारिश में, जुबिन नौटियाल जी आपको सुनाने वाले हैं।

0: सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मे को लाने जा रहा हूँ।
0: बहू को? अभी दो दिन तो हुए उसे मायके गए हुए।
1: दो दिन, दो साल जैसा नहीं लग रहा। और बारिश भी आने वाली है।

मैं हो गया दीवाना, पहली बारिश में अभी आप सुन रहे थे। गदर से हम पेश करते हैं पार्ट टू। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं।

गदर पार्ट टू से हमने पेश किए हैं चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं नहीं लगता दिल तेरे बिना।

0: नहीं लगदा दिल तेरे बिना भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी किसी का भाई किसी की जान। मोहम्मद फैज आपको सुनाने वाले हैं तू है क्या मेरे लिए।
1: सिर्फ तुम ही हो हमारे दिल की अमानत, जिंदगी है हमारी

ये आप ही का हैप्पी स्टेशन फार होन हिंदुस्तानी रेडियो, हर एक काम जो आपके रेडियो के सिरे कराना है कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से, या चले आइए दफ्तर पर, खुला रहता है दोस्तों रोजाना। और आपको मानना चाहिए खास फरमाए जरूरी खबर मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह आपके पास है तो आप शौक से चले आइए फार होन हिंदुस्तानी रेडियो के पास। पिया तू अब तो आजा, आशा भोसले अरदीप बर्मन का म्यूजिक है। और जब ऐसा गीत है दोस्तों पिया तू अब तो आजा, तो कौन हो सकता है जो ये गीत को एक्ट किया होगा? हेलन के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। हेलन, जितेंद्रा, आशा परेक, ये सब ही काम किया। फिल्म कारवा निहिर इन सीफन तक का फिल्म है। इसी फिल्म का सॉन्ग आशा भोसले के आवाज़ में आप सुनेंगे।

आजा पिया, अब तो आजा, उसके बाद आजा पिया तुम्हें प्यार दो। बहारों का सप्ते फिल्म का नाम है, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत है दोस्तों। और ये फिल्म में आशा परेख और रजिस खन्ना दोनों इस फिल्म में काम किया। तो आशा परेख रजिस खन्ना बड़े बड़े फिल्मों में काम किया, जैसे बहारों के सपने, कटी पतंग, आन मिलो सजना वगैरह वगैरह, नाइटिंगेल, लता दीदी एंड एडी बर्मन के म्यूजिक पर।

नीलहंटिंग नीहिल शस्त्र के बाद आपको मालूम है दोस्तों, एक फिल्म था जिसमें धर्मेंद्र काम किया आशा परेख के साथ, फिल्म आया सावन झूम के। वाह क्या फिल्म था दोस्तों, बलराज सहनी भी इस फिल्म में काम किया और एक सॉन्ग है पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी एंड नाइटिंगेल लता दोनों के आवाज़ों में आप सुनेंगे आया सावन झूमके का टाइटल सॉन्ग। धर्मेंद्रा और आशा परेख दोस्तों ये दोनों भी बड़े बड़े फिल्मों में काम किए, जैसे आए दिन बहार के फिल्म शिकार, फिल्म समाधि और आए दिन बहार के फिल्म शिकार, फिल्म समाधि और बड़े बड़े फिल्मों में ये दोनों काम किया दोस्तों। आपको मालूम है उन दिनों में नीहिल शस्त्र के बाद है जब धर्मेंद्र एक टॉप एक्टर था और आशा जी भी कुछ पीछे नहीं था, वो भी एक टॉप एक्ट्रेस था। तो दोनों का फिल्म आया सावन झूमका जो मैंने चॉइस करके रखा उस फिल्म का सॉन्ग अभी आप सुनेंगे राफी साहब एंड नाइटिंगेल लता मंगेशकर दोनों के मीठी आवाज़ों में।

आया सावन झूम के बाद दोस्तों, अब की बार उन दिनों के बाद है कपूर परिवार का सबसे हैंडसम बॉय शशि कपूर का फिल्म आमने सामने का एक सॉन्ग है, नहीं मिला के चैन चुराना किसका है ये काम। शशि कपूर इस फिल्म में शर्मिला टैगोर के साथ काम किया दोस्तों, और शशि भी शर्मिला के साथ और कई फिल्म बनाया, बड़े बड़े फिल्म जैसे सुहाना सफ़र, माई लव, अनहारी वगैरह वगैरह। तो हम सब मिलकर सुनेंगे नैन मिलाकर चैन चुराना किसका है वो काम, मुझको पता है उस जालिम का नाम।

ये आपको भी पता है उस आलिम का नाम, मैं सोचा जरूर पता होगा। दोस्तों, मस्त बहारों का मैं आशिक, फिल्म फर्ज, आप ये फिल्म जरूर देखे होंगे। उन दिनों में ये फिल्म कितना हलचल मचाया और जितेंद्रा फिल्म में काम किया बबीता के साथ। दोस्तों, बीते हुए दिनों में एक बात थे कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म एक्टर्स जब शुरुआत करते थे तब फिल्म फ्लॉप हो जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा एक्टर का फिल्म फ्लॉप हो जाते थे, उसके बाद टॉप एक्टर बन जाते थे। उसी तरह से एक एक्टर भी जितेंद्रा है या था, जो जिनका एक दो फिल्म फ्लॉप हुआ फिर जाकर एक टॉप एक्टर बना। तो माइटी मुकेश नहीं है, मैंने सोचा माइटी मुकेश नहीं, राफी साहेब वंस अगेन, मस्त बहारों का मैं आशिक, जितेंद्रा एंड बबीता का फिल्म फर्स्ट का सॉन्ग।

ये आप ही का हैप्पी स्टेशन फाह और हिंदुस्तानी रेडियो, आप सुने प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। बहारों ने किए सजदे, बहारों ने किए सजदे, फूलों ने सर झुकाया है। माइटी मुकेश के आवाज़ में आप गीत सुनेंगे, बॉम्बे बाय नाइट फिल्म का नाम है।

ओ मेरे हमराही मेरे बा थामे चलना, ओ मेरे हमराही मेरे बा थामे चलना, बदले दुनिया सारी, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। दोस्तों फिल्म गाइड, इस फिल्म में देवानंद एक गाइड था, हिट्स था, रेस हिट्स, और एक सॉन्ग है जिसने शैलेंद्रा ने लिखा है। शैलेंद्रा का असली नाम है शंकर दास केसरी लाल होना चाहिए, शंकर दास केसरी लाल शैलेंद्रा का असली नाम है। आप जानते दोस्तों, एक गाना जब एक गीत जब बनता है तो लोग गाते हैं, हम हमेशा कहते हैं राफी ने अच्छा गाया, मुकेश अच्छा गाया, लता ने अच्छा गाया, किशोर कुमार ने गीत अच्छा से गाया, लिखी वो शख्स जो एक गीत लिखता है उसका नाम हम नहीं लेते हैं। वो आदमी जो बैठ कर सोच सोच के दिन रात एक गीत लिखते, उन्हें हम भूल जाते हैं, ऐसा मत होना चाहिए। शैलेंद्रा का लिखा हुआ गीत है, गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, किशोरदा एंड लता।

दिल कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। जैसे मैंने कहा दोस्तों, बहुत से एक्टर्स का फिल्म फ्लॉप हुआ है और सलमान खान का भी 2-3 फिल्म लगातार फ्लॉप हुआ। तो एक रात्रि में लगभग आधे रात को सलमान खान गोविंदा को तार किया। उन दिन गोविंदा उनका दोस्त है, तो उसे कहा कि मैं अब स्टॉप करूँगा, फिल्म फ्लॉप हो जाता, अच्छा नहीं लगता है। तो गोविंदा सलमान खान का हाथ पकड़ा, उन्हें मदद किया दोस्तों। तो सलमान खान आज इतना बड़ा एक्टर है। सलमान खान का एक फिल्म है लकी, और उसी फिल्म का एक सॉन्ग है सोनू अतनान सानी, दोनों की आवाज़ में सुन जरा।

सुन जरा सुनिए सुन जरा, इसी फिल्म का एक दूसरा सॉन्ग मैं सेलेक्ट करके रखा हूँ, लॉकी नो टाइम फॉर लव फिल्म का नाम, अनुराधा एंड उदित नारायण।

वाक्य लव सॉन्ग जा मेरी जा रही है सनम, एक दूसरा लव सॉन्ग है दोस्तों शाहरुख खान एंड यूही चावला ने काम किया फिल्म यस बॉस, 90s रोमांटिक सॉन्ग है और ये गीत मैं कोई ऐसा गीत गाओ आप सभी के लिए है।

मशहूर एक्टर मिस्टर भारत यानी कि मनोज कुमार का मृत्यु हो गया है 4 अप्रैल 2020 को। तो बहुत दुख की बात है दोस्तों, ये एक बड़ा एक्टर था और उन्हीं के बारे में मैं एक दो बात करूंगा। हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी, असली नाम हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी, पैदा हुआ 24 जुलाई 1973 तक अबोताबाद पाकिस्तान में। 10 साल की उम्र में परिवार के साथ दिल्ली चला गया, इसलिए कि लड़ाई था, इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़ रहे थे, तो परिवार के साथ चला गया दिल्ली। दिल्ली में हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया, उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में चला गया, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री जाए पहले मूड का काम किया। एक मूड आर्टिस्ट था या मूड आमतौर पर था मनोज कुमार, तो उसके बाद वो चला गया हिंदी फिल्मों में। मनोज कुमार का इडोल था दिलीप कुमार और अशोक कुमार, इसलिए अपन नाम रख दिया मनोज कुमार। ये फिल्म शबनम जब देखा तो दिलीप कुमार का फिल्म था और इसी फिल्म के देखने के बाद ये अपन नाम तुरंत बदल दिया मनोज कुमार। और पहला फिल्म जो बॉलीवुड उन दिनों में नहीं था लेकिन इंडियन फिल्म में जब काम किया तो पहला फिल्म जो था वो था काश की गुड़िया 1976 तक में ये फिल्म रिलीज हुआ। उसके बाद फिल्म मिलन पिया मिलन की आस, फिल्म रेशमी रुमाल 1977 तक में, विजय भट्ट का फिल्म हरियाली और रास्ता, आप ये फिल्म जरूर देखे होंगे, आशा माला सिन्हा के साथ मनोज कुमार फिल्म में काम किया। 1976 तक में राज खोसला का वो कौन थी, 1976 तक में विजय भट्ट का हिमालय की गोद में, मनोज कुमार माला सिन्हा के बाद एक बार फिर इस फिल्म में काम किया। फिल्म दो बदन जिसमें आशा परेख के साथ एक्ट किया। बहुत से रोमांटिक फिल्मों में काम किया 1976 तक में दोस्तों, जैसे कि अपना अपना बना के देखो, नकली नवाब, पत्थर के सनम, फिल्म साजन, सावन की घटा, अपने हुए पराए, फिल्म पहचान, आदमी, फिल्म आदमी जहां पर अपन इडोल दिलीप कुमार के साथ काम किया, फिल्म गुमनाम, फिल्म वो कौन थी, ये सभी फिल्मों मनोज कुमार का थे। और एक बड़ा फिल्म जो मनोज कुमार ने बनाया वो था फिल्म उपकार, इस फिल्म का एक सॉन्ग मैं चलाऊंगा।

मनुष्य कुमार बड़े दुख के बात है दोस्तों कि उनका मृत्यु हो गया है। मनुष्य कुमार न सिर्फ एक्टर था, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, स्क्राइफर, एडिटर और साथ ही साथ एक पॉलिटिशियन भी मनुष्य कुमार थे। मनुष्य कुमार निकली फैफन शस्त्र के बाद है जब वो फिल्म यहाँ दोस्तों एक रिवोल्यूशनरी फिल्म बनाया जिसमें उनका नाम भारत कुमार पड़ा। वो था फिल्म शहीद निगरी फैफन शस्त्र के बाद है। और ये फिल्म बनते समय मनोज कुमार दो या तीन हफ्ते तक वो जहाँ जेल खाना जहाँ पर ये फिल्म बना वहाँ पर सोया, वहाँ पर रहा भी, इसलिए कि वो फिल्म से मनोज कुमार जब एक फिल्म बना रहे थे तो ये अपन ध्यान और जितना दिल दिमाग है सब वहीं पे लगा रहे थे। तो वहाँ जहर खाना में रह कर और वहाँ पर ये फिल्म बनाया। लेकिन फिल्म शस्त्र उसी साल जब पाकिस्तान इंडिया का ओवरलॉक था तो प्रीमियर लाल बहादुर शास्त्री मनोज कुमार से कहा कि एक कहानी जय जवान जय किसान का एक कहानी बनाने को। तो मनोज कुमार ने लिखा फिल्म उपकार जिसमें प्रेम चोपड़ा उनका छोटा भाई था। आप सभी ये फिल्म जरूर देखे होंगे। ये फिल्म पहला फिल्म फेयर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मनोज कुमार को मिला इसी फिल्म में। और एक दूसरा फिल्म जो मनोज कुमार के था फिल्म शोर। फिल्म शोर मनोज कुमार, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन बहुत से लोग इस फिल्म में काम किया। उसी फिल्म का एक सॉन्ग मैं पेश करूँगा।

स्वर्गीय मनोज कुमार यार सीफन तक ने तीन बड़ा फिल्म बनाया, जैसे फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, जैसी फिल्म सीफन तक ने फिल्म बनाया जो जिसमें सिनत अमन, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन काम किया। लेकिन सैफन सीफन के बाद जब फिल्म सन्यासी में काम किया और बनाया भी हेमा मालिनी के साथ, सेशन सीफन देखनी सेशन सीफन पे फिल्म 10 नंबरी निधि इन तक के बाद, जब मैंने आपसे बता चुका हूँ कि अपन इडोल दिलीप कुमार के साथ फिल्म क्रांति में काम किया, ये एक आसादी की कहानी थी। निधि फैफन नीखन तक में मनोज कुमार एक आखिरी फिल्म में काम किया, वो था फिल्म मैदाने जंग। ये फिल्म फ्लॉप हो गया, फिर भी फिल्म मेरा नाम जोकर में भी छोटा सा रोल अदा किया जिसमें राज कपूर का ये फिल्म था, तो मनोज कुमार भी इसमें छोटा सा रोल अदा किया। यार लगभग 40 साल मनोज कुमार फिल्म में काम किया दोस्तों, और जैसे मैंने कह चुका वो सिर्फ नहीं एक्टर थे लेकिन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, स्क्राइफर और एडिटर भी था। फिल्म हरियाली और रास्ता जिसमें माला सिन्हा के साथ खेला, उस फिल्म का एक सॉन्ग

फिल्म उपकार का उपनामक के समय दोस्तों शूटिंग के समय मनीष कुमार सुबह 5 बजे शुरुआत करते थे अपन शूटिंग का, तो आशा परेख इस बात से खुश नहीं था और इन दोनों में आपस में प्रॉब्लम हो गया। तो इसी कारण जब फिल्म उपकार का प्रीमियर हुआ तो आशा परेख नहीं गया वहां पर प्रीमियर पर। फिर भी निखिल शास्त्रक में दोनों दोस्त बन गया और मिलकर फिर फिल्म साजन में काम किया। तो ये रेशन फिर के बात है जब अल्कबीन फरकी सिंह था इंडिया में तो शिवसेना में भाग लिया मनोज कुमार का शादी हुआ शशि गोस्वामी के साथ। दो बेटा है विशाल और कुनल। विशाल एक सांगर या कि गायक और कुनल एक एक्टर। मनीष कुमार भी साई भक्त है। तो ये एलफ के बात है जब शिरडी में एक रास्ता का नाम रखा गया मनीष कुमार गोस्वामी रूट। मनीष कुमार का एक हैंडल स्मारक था भी और ये हैंडल स्मारक फिल्म शांति ओम शांति जब बनाया गया, आप जानते हैं शाहरुख खान का फिल्म ओम शांति ओम, तो मनीष कुमार का ये हैंडल स्मारक वहाँ पर लोग इस्तेमाल किया और मनीष कुमार से इजाज़त नहीं मांगा। तो मनीष कुमार एक बेहतर रैक साक में चलाया और ये साक को जीता। मनीष कुमार आप जानते हैं दोस्तों मिस्टर भारत की और कहानी है। एक सॉन्ग मैं पेश करूंगा वो है फिल्म दो बदन। निखिल शास्त्रक भी फिल्म रिलीज हुआ। आशा परेख के साथ मनोज काम किया इस फिल्म में।

0: मलिक,
1: मनोज कुमार, मनोज कुमार आखिर था निहरी सिविल फेथ तक से लेकर निहरी निहन निहन तक में इंडिया फिल्म में दो जैसे मैंने कहा दो बेटा और मनोज कुमार नहीं तुए निहन तक में उन्हें पद्मा श्री का पद्मी मिला उसके बाद दादा पल के अवार्ड नहीं 2015 के बाद है जो उन्हें दादा पल के अवार्ड मिला सात फिल्म फेयर अवार्ड मनोज कुमार जीता उस और एक नेशनल फिल्म अवार्ड भी मनोज कुमार को मिला निहि निहि शस्तक में एक आखिरी फिल्म जो रिकॉर्ड किया वो था फिल्म जय हिंद जिसमें उनका बेटा कुनल ने काम किया लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गया इन सीफंड के बात है जब फिल्म पूरब और पश्चिम बनाया तो ये फिल्म 50 हफ्ते से ज़्यादा दोस्तों जी हाँ ये फिल्म 50 हफ्ते से ज़्यादा रिलीज हुआ लंदन में आप सोच सकते हैं एक साल में तो इन फेफ तक वीक होता है ना तो मनोज कुमार का फिल्म लगभग एक साल लंदन में लगातार पेश किया गया वो था फिल्म पूरब और पश्चिम चांद सी महबूबा फिल्म हिमालय के गोद में का एक सॉन्ग है मनोज कुमार जिसमें काम किया

मनोज कुमार, स्वर्गीय मनोज कुमार का मृत्यु हो गया, इसे मैंने शुरुआत में कहा दोस्तों। तो निघंटिंग इन तक तक में बॉक्स ऑफिस हिट क्रांति जब ना अपन इडोल दिलीप कुमार से बनाया, तो इस फिल्म इतना पॉपुलर था दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में कि दुकानों में वहाँ पर फिल्म क्रांति का टी शर्ट यास फेस्ट और सिर्फ ऑन सिर्फ फेस्ट यास ऑन दर खुद भी लोग बेचते थे। इतना पॉपुलर था ये फिल्म ये सब गांव में, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में। फिल्म उपकार का एक सॉन्ग मैं और पेश करूंगा, दीवानों से मत पूछो दीवानों पर क्या गुजरा है।

दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पर क्या गुजरा है। फिल्म उपकार का सॉन्ग अभी माइटी मुकेश के आवाज में आप सुन रहे थे। स्वर्गीय मनोज कुमार का कहानी मैं आपको सुनाया दोस्तों, और बड़े दुख की बात है, आप सभी को मानना चाहिए कि हार्ट अकत या हार्ट कॉम्प्लिकेशन के द्वारा मनोज कुमार का मृत्यु हो गया 4 अप्रैल को में 88 साल की उम्र में। मनोज कुमार दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका नाम फिल्म दुनिया में बड़े गर्व से लिया जाएगा।

ये आप ही का हैप्पी स्टेशन फॉर होम हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। फिल्म पकीसा, ये एक फिल्म है जो निहरी ट्विन सी फिंटेक में रिलीज हुआ। राजकुमार और साथ ही साथ मीना कुमारी, वैसे तो हकीकत में राजकुमार मीना कुमार के पाछे दीवाना था, लेकिन मीना कुमारी उन्हें नहीं चाहते थे, नहीं मांगते। फिर भी उसका पीछा राजकुमार कभी नहीं छोड़ता था। जब कहीं एक फिल्म में फिल्म तैयार होता था, जब मीना कुमारी उस फिल्म में काम किया, तो राजकुमार जाकर प्रोड्यूसर से बातचीत करते थे कि मुझे भी इस फिल्म में ले लो। तो इस तरह से भी प्यार मोहब्बत होता है। और उसी फिल्म का एक सॉन्ग है चलते चलते, एक रोमांटिक क्लासिक सॉन्ग।

0: इंसान, एक इंसान मैदान बदलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंसान मैदान बदलते हैं, वस्त्रे बदलते हैं, संबंध बदलते हैं, फिर भी दुखी रहता है। क्योंकि क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं बदलते हैं।
1: मेरे घर चलें।

करो ना बोट के पारी करो, ये गाना के नाम है रेवती राम रूप का और ये गाना है पारी करो चटनी रीमेक सॉन्ग है। तो हम फिर चलते हैं रेवती राम रूप की एक और हो जाए और वो भी एक चटनी जोगा शोगा।

रेवती राम रूप के आवाज में आप लोगों ने सुने हैं हमारे यारो। उसके बाद में हम भी चलते हैं अपना देश की रामदेव जय दू रे में। इस बैठक गाना चटन

0: और मैं रमता जोगी राम के बाद में। दोस्तों हम चलते हैं और फिर एक बार कहाँ चलते हैं, और वो है राधिका की ओर। राधिका दिन बयाओ हॉट चटनी जोंग जल मोहो कमेज का दम जमीन से अमेज खान स्विंग और राल वार ये ओ बैंड मख वेल अलमाल अलीन बे रेडियो फाहोन
1: दिनवा कहा गवायो ना।
0: ओहो कहा दिनवा गवाईले है
1: नवा कहा गवा
0: फुसूर फुसूर फुसूर
1: रति।

वो है रसिक रसिक रसिका दीनदयाल हॉट चटनी हमारे यारो, जो आपको हम आज सुनाते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं लोकल रामदेव चैतू।

0: टंकी चरी ओर मोर मन लागा बभनवा जी हमारे यारो
1: people around the globe, this one's for you.
2: Here we go.
0: और कुछ फिजी सॉन्ग आज को लोकल फिजी सॉन्ग सुनाएंगे.

मेरा रंगला और राम किशुन कविता, राम किशुन का ये गाया हुआ ये सॉन्ग है यारो। हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो क्या होगा, देवी निहा सरस्वत राधे व्रजा, और क्या क्या नाम है इसमें दोस्तों, आओ सुना जाए ये क्या सुनाते हैं।

और हद से ज्यादा तुम किसी से प्यार मत करना दोस्तों, कारण कि जब जाना प्यार करते हैं और प्यार में कभी टकराव जो हो जाता है तो बस आंसू ही बहते हैं, उसके बाद हम आउट चलते हैं और खबरों का हार्ट सॉन्ग।

बस ही याद रह जाती है। और आज हम आप लोग को अनहील यूरमैन से हम आप लोग को दर्द भरी गीत को सुनाएंगे, और खबरों का हार्ट सॉन्ग, अगर आपका दिल टूट गया है प्यार में धोखा को।

और अच्छा सिला दिया तूने मेरी प्यार का। दोस्तों, दर्द भरी खबरों का हर सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाए हैं, किसी के दिल आपने

और दोस्तों अगर ये आम की याद नहीं आई तो अब किसी से हमें क्या कहना है, तो आपको खबरों का हर सॉन्ग के ओर हम जाते हैं। वफा नाराज आई।

वफाना राज आई तुझे हर जाई खबरों का हार्ड सॉन्ग। आपके दिल अगर टूट गया है या टूटने वाला है या चोट लग गया है तो आपकी आंखों में हम आंसू नहीं प्यार देखना चाहते हैं। इस सॉन्ग से आपके जो दर्द है उसको हम भरते हैं, तो आओ मिलकर ये इस गीत को सुना जाए।

दर्द भरी खबरों का हर सॉन्ग्स किसकी किसी के, अगर जो आपके यानी कि दिल टूट गया है या किसी ने तोड़ दिया है तो मत घबराना, जो टूट जाता है वो एक दिन जुड़ भी जाता है। आपको हम बताते हैं कि तड़प तड़प के इस दिल को लोग याद करते हैं और इस दिल से पुकारते हैं, लेकिन जब तक उसकी समय नहीं आएंगे वो दिल नहीं जुड़ते हैं। तो एक और गीत की ओर चला जाए।

नंदिनी नंदिनी नंदिनी समीर चाह रहा है। पापा नहीं माने, वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। इतनी इजाजत दी है कि तुम उसे जाते वक्त सिर्फ एक नजर देख सको। उठो नंदिनी, उठो। समीर हमेशा के लिए जा रहा है, जाकर देखा उसे, फिर शायद जिंदगी में तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी। जाओ नंदिनी।

और ये सुपर हिट सॉन्ग है दोस्तों, और उसके बाद तो हम चलते हैं और दर्द भरी गीतों का प्रोग्राम आज हम आज चलाते हैं।

तो रोना पड़ जाती है। दोस्तों ये दर्द भरी सॉन्ग है जिसका दिल टूट गया है, अगर प्यार में धोखा भी मिल चुका है तो सबके लिए ये गीत है।

और दोस्तों मैं भी शायर नहीं हूं, लेकिन हम कुछ आपको शायर के गीत को सुनाते हैं। और शायर के बाद हम क्या सुनाएंगे, हम चलते हैं, ये दुआ है मेरा रब से दुआ है दोस्तों, और जो रब से दुआ करेंगे तो आपको जरूर रब आपका दुआ जो है वो कबूल जरूर करेगी। तो फिल्म के नाम है सपना साजन की, अलका की और कुमार शानू का ये सॉन्ग है।

दोस्ती पसंद आए हमारे दोस्तों, तो बात क्या है, कैसे है, आपको हम जरूर सुनाएंगे। तो हमारे दोस्तों आज प्यार के मूड में फिर आ गए हैं, और प्यार के मूड में आए हैं तो प्यार तो करना चाहिए। तो हम चलते हैं बाला सुब्रमण्यम की ओर। ये भी बहुत लवली गीत गाया है दोस्तों, आओ एक और सुना जाए, और वो है बाला सुब्रमण्यम के आवाज में।

बाबुल सुप्रीमनियन के बाद तो हम चलते हैं और एक गीत के ओर, वो भी आज प्यार के मूड में है, कुमार शानू के ये गीत है, आओ प्यार करे, आप भी प्यार करो ना।

0: और चांद से पर्दा कीजिए, कोई चुरा न ले और चेहरे के नूर हमारे। ये तो एक और हो जाए बाला सुब्रमण्यम का ओल्ड सॉन्ग
1: बहुत प्यार,
0: और मैं भी तुमको बहुत प्यार करते हैं हम।

और बहुत प्यार तो करते हैं और सदा करते ही रहेंगे, ये हमारा वादा है। बहुत प्यार करेंगे और करते ही रहेंगे जब लेक सांसों में दम रहेगा। दोस्तों तो हम अगला गीत की ओर जाते हैं। अभी सांस लेने की फुर्सत तो नहीं है। अलका याग्निक सोनू निगम का ये सॉन्ग है।

और कहते हैं अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, और इसलिए कि तुम मेरी बाहों में हो तो आप कितनी महान हैं कि सांस लेने की भी हमें फुर्सत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी यादों में नहीं मेरी बाहों में हो। दोस्तों हम चलते हैं नाइटिंगेल और लता मंगेशकर और परमान श्री मोहम्मद रफी के एक मस्त भरी प्यार भरी गीत आतिश वेलन हील आवली ची फन 1975 और फिल्म के नाम बा भाभी, और ये गीत हम चलाते हैं आप लोग सुनो।

छुपा कर मेरी आंखों को तो पूछे कौन है और बता दीजिए नाना चिकिल लता जी और प्रणाम श्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ सॉन्ग है। और हम चलते हैं कभी कभी जब प्यार हो जाता है तो लोग खोजते हैं, क्या खोजते हैं, लोग खोजते हैं कि हम कहाँ अपना प्यार को ढूंढूं और प्यार में लोग क्या क्या देखते हैं। और ये गीत है।

और दोस्तों हम चलते हैं एक ओल्ड इन गोल का पुराना गीत है, वो है फिल्म का नाम है मेरे ख्याल से ये कुछ और फिल्म का नाम है तुम अकेले तो कभी बाग में मत जाया कर आओ प्यार करे। मूवी का नाम है आओ प्यार करे, ये रजत खन्ना का ये एक फिल्म है और ये गीत आओ सुना जाए मिलकर।

फाहम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहम के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फेटा फाहम हिंदुस्तानी रेडियो।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ प्रोग्राम लेकर स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया।

सुनने वालों, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कुछ पूर्वभाषी तथा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्वप्न, यानी कई ऐसे लोग हुए हैं जिनको सपने में पहले ही पता चल गया था कि उनके आने वाला समय कैसा है या उनके जीवन में कौन सी घटना घटेगी। आभूषणों पर अक्षरों का अर्थ। एक महत्वपूर्ण स्वप्न का वर्णन आयुमान प्रश्नेटी नामक पुस्तक के 80-85 पृष्ठ मिलते हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिल्ट प्रेकेट आगटे एक बहुत प्राचीन आभूषण पर खुदे अक्षरों का अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा था। वह बेबीलोनिया के किसी सम्राट से संबंधित 3000 वर्ष से अधिक पुराना था, जिसके दो टुकड़े थे। एक दिन आधी रात के स्वप्न में एक पुजारी ने बताया कि दोनों टुकड़े एक ही गोल वस्तु के तोड़कर बनाए गए हैं। दूसरे दिन हिल प्रेकेट ने उनको जोड़कर देखा तो स्पष्ट पड़ा गया भगवान नीलिम्ब को सम्राट कुरी गालजू की भेंट।

सुनने वालों, ऐसा ही एक संदेश मैं आपके लिए और रखने जा रही हूँ, सही वसीयत की सूचना। अमेरिका में सन 1937 में प्रकाशित नामक पुस्तक में चैफिन के एक धनी किसान ने 1905 में एक उत्तराधिकार पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी समस्त जायदाद तीसरे बेटे के नाम लिख दी, और 1919 में एक दूसरे उत्तराधिकार पत्र में जायदाद चारों बेटों में बराबर बांट कर लिख दी। बाइबल में रख कर बिना किसी को बताए भूल गया।

उनके पिताजी ने कैसे वसीयत बना के रख दी एक बेटे के लिए, फिर दूसरी वसीयत बनाई दूसरे तीन बेटों के लिए, लेकिन वो दूसरा उनको कागज़ नहीं मिला तो पहली वसीयत के मुताबिक पहले बेटे को ये सारी जायदाद मिलने वाली थी। लेकिन जब दूसरे बेटे को सपना आया कि नहीं, एक और वसीयत बना के उन्होंने अपने यास में रखी हुई है, तो वो बेटे ने वो कागज़ निकाला, अदालत में पेश किया, फिर एक भाई के बजाय चारों भाइयों को बराबर जायदाद मिली।

सुनने वालों, आप सुन रहे हैं फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो, जो आप सबके लिए अब नए नए प्रोग्राम लेकर आता है। अब हम आगे चलते हैं। नेत्रों का फड़कना यानी आँखों का फड़कना। दाएं नेत्र की ऊपरी पलक, दाएं नेत्र की निचली पलक। धन यश प्राप्ति चिंता का विषय। बाएं नेत्र की ऊपरी पलक, बाएं नेत्र की निचली पलक। शत्रु से संघर्ष, कहा सुनी हो जाना, नीचा देखना। दाएं नेत्र का दायां कोना, कहा सुनी में नीचा देखना। बाएं नेत्र का नाक वाला, शुभ संकेत पुत्र प्राप्ति, शिष्य या कम आयु के प्रियजन से भेंट। यदि दाई आँख फड़कती है तो शुभ, परंतु स्त्री के लिए अशुभ। यदि बाई आँख फड़कती है अशुभ है, परंतु स्त्री के लिए शुभ है। दोनों एक साथ फड़कती हैं तो स्त्री को भय चिंता शोक हो जाता है। बायां नेत्र नीचे को शुभ होता है, बायां नेत्र ऊपर को चिंता भय शोक लड़ाई वाला होता है। सुनने वालों, अभी आप लोगों ने सुना नेत्रों का फड़कना, यानी जब हमारी आंखें फड़कती हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है।

सुनने वालों, स्वप्न विज्ञान बताता है कि हमारे शरीर में से सारे अंग ही फड़क सकते हैं, चाहे आँख हो, चाहे हमारा तालुआ हो, चाहे कंठ हो, चाहे कंधे हो, अब मूछे भी हो सकती हैं। सुनने वालों, समूची मूछ, शुभ धन धान्य दूध दही सवारी ऐश्वर्य। दायां भाग शुभ विजय, बायां भाग कहा सुनी झगड़ा। सुनने वालों, आप सबने सुना कि मूछें फड़कने से भी लाभ हो सकता है और परेशानी भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है। ये संदेश जो आप सबने सुना, ये स्वप्न विज्ञान से निकाला गया है। सुनने वालों,

तालू का फड़कना, कंठी की कंठी, आर्थिक दृष्टि से शुभ भोगों की प्राप्ति, तालू का दायां भाग रोग से परेशानी, तालू का बायां भाग किसी अपराध में बंधी, दाढ़ी फड़के अपशकुन, लड़ाई मुकदमे में हार, दाढ़ी का दायां भाग सुख की प्राप्ति, दाढ़ी का बायां भाग अधिक अच्छे धन यश दोनों मिले।

सुनने वालों, हमारा अगला संदेश है कंठ का फड़कना। पुरुष का इच्छित भोजन मिले, स्त्री का कंठहार आदि मिले। कंठ का बायां भाग अच्छी उपलब्धि, कंठ का बायां निचला भाग अल्प मूल्य के आभूषण मिले। कंठ का ऊपरी भाग स्वर्णमाल मिलने की संभावना, कंठ का निचला भाग शस्त्र पीड़ा। सुनने वालों, ये संदेश रखा गया कंठ के बारे में जो हमने निकाला स्वपन विज्ञान से। सुनने वालों, आप सबको तो मालूम है कंठ किसे कहते हैं। कंठ कहते हैं गले को, और कहते नहीं कि गले के लिए हार भी चाहिए, कंठ हार।

सुनने वालों, अब मैं आपको बताऊंगी कि स्वप्न में देखे गए रंगों का फल, कि अगर हमें सपने आते हैं उसमें हमें रंग दिखाई देते हैं तो उन सपनों का क्या मतलब है। लाल रंग, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु। हरा रंग, धन कमाने की योग्यता। नीला रंग, सुखी पारिवारिक जीवन। सफ़ेद रंग, अपने समाज में प्रतिष्ठित स्थान की प्राप्ति। नारंगी रंग, अपना निजी मकान होना। पीला रंग, दूसरों की ईर्ष्या का शिकार होना। भूरा रंग, बेईमानी का दोष लगाना। काला रंग, दुर्भाग्य। सुनने वालों, ये है स्वप्न में रंगों के बारे में। स्वप्न कि जब हमें सपने आए उसमें रंग दिखाई दे तो उन सब का क्या मतलब होता है। सुनने वालों, आप सबने सुना कि सपन में देखे गए रंगों का क्या महत्व होता है और उनका क्या मतलब होता है। जैसे कि लाल रंग दिखाई दे तो उसमें अच्छा स्वास्थ्य होगा और आयु हमारी बढ़ेगी। और जैसे कि आपने सुना कि हरे रंग का क्या मतलब होता है। हरा रंग, धन कमाने की योग्यता, कि अगर हरा रंग दिखाई देगा सपने में तो हमें धन कमाने की योग्यता प्राप्त होगी। नीला रंग, सुखी पारिवारिक जीवन, कि अगर हमें सपने में नीला रंग दिखाई दे तो उससे हमारा परिवार सुखी होगा। सफ़ेद रंग दिखाई दे तो अपने समाज में प्रतिष्ठित स्थान की प्राप्ति, कि हम समाज में एक अच्छा सा स्थान प्राप्त करेंगे। नारंगी रंग, अपना निजी मकान होना, कि हमें अपना मकान हो जाएगा, अपना घर मिल जाएगा। पीला रंग, दूसरों की ईर्ष्या का शिकार होना। यदि सपने में हम लोगों को पीला रंग दिखाई दे तो उसका मतलब है कि हम दूसरों की नफरत के शिकार बनेंगे, दूसरे हमसे जलेंगे। भूरा रंग, बेईमानी का दोष लगाना, कि अगर हमें सपने में भूरा रंग यानी ब्राउन रंग दिखाई दे तो दूसरे लोग हम पे दोष लगाएंगे कि तुमने हमसे बेईमानी की है। काला रंग, दुर्भाग्य, वो तो आप सब जानते हैं कि काला रंग हमेशा दुर्भाग्य का ही होता है।

स्वप्न में देखी गई धातुओं का फल, सोना, अनेक कठिनाइयां, रोग, धन संपत्ति की हानि, चांदी, प्रेम में निराशा तथा विश्वासघात, तांबा, यात्रा में दुर्घटना, लोहा, अपने परिश्रम। सुनने वालों, सपने में जब हमें धातुएं दिखाई दें, यानी कि सोना चांदी जिससे बनता है, तो उसके क्या क्या परिणाम होता है? सुनने वालों, जैसे कि धातुओं से क्या क्या परिणाम होता है, जैसे सोना खाउट हमें अगर दिखाई दे सपने में, तो उससे हमें अनेक कठिनाइयाँ होती हैं, रोग होता है, धन संपत्ति की हानि। हमारी नानी और दादी भी कहते होते थे कि सोना मिलना भी मुश्किल है और खोना भी मुश्किल है। अगर मिल जाए तब भी उसका अच्छा परिणाम नहीं होता, अगर खो जाए उसका भी अच्छा परिणाम नहीं होता। चांदी, प्रेम में निराशा तथा विश्वासघात। अगर सपने में हमें चांदी दिखाई दे तो उससे हमें प्रेम में निराशा होती है और कोई हमारे साथ विश्वासघात करता है। सुनने वालों, तांबा, अगर तांबा हमें सपने में दिखाई दे तो यात्रा में दुर्घटना हो सकती है। सुनने वालों, अगर सपने में हमें धातुओं में लोहा दिखाई दे तो उसका मतलब है अपने परिश्रम, कि हमें बहुत ज़्यादा परिश्रम यानी मेहनत करनी पड़ेगी। सुनने वालों,

सुनने वालों, बुरे सपनों से बचाव, यानी कि अगर हमें बुरे सपने आए तो उसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं। सोते समय व्यक्ति का हाथ उसके सीने पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाथ से निकलने वाली विद्युत से हृदय की स्वाभाविक क्रिया अधिक होती है। सोते समय विष्णु, कृष्ण, माधव, महामुनि, कपिल, आस्तिक का स्मरण कर लें। सोते समय व्यक्ति यह शावर मंत्र 3 बार बोलकर बाएं घुटने पर 3 बार हाथ मारकर शिव का स्मरण करके सो जाए। शिव की कूची, बजर का ताला, ई देही का बजरंग रखवाला, शिव गौरख, शिव गौरख, शिव गौरख। सोने से पूर्व स्वास्थ्य प्रसन्नचित हो तथा सोते समय उत्तर की तरफ सिर नहीं करना चाहिए।

सपने में अंक देखना, यानी सुनने वालों, अगर हमें सपने में साइफर्स दिखाई दें तो उसका क्या मतलब होता है? स्वप्न में 8 का अंक देखना दुर्भाग्य सूचक होता है। हमारा निजी विचार है कि शुक्र के तुला 7 या वृषभ 2 लगन वालों को 8 शनि का अंक दुर्भाग्य सूचक नहीं होगा। 18 का मंगल अंक देखना जातक को विपत्ति में डाल सकता है, परंतु मेष वृश्चिक लगन वालों को कोई हानि नहीं, उसको कोई हानि नहीं पहुंचती। 11 का अंक देखना सौभाग्य सूचक है। सुनने वालों, अब आपको अगर सपने आए और उसमें आपको साइफर्स दिखाई दें

सुनने वालों, अगर आप सपनों में खुद को अस्वस्थ यानी रोगी देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? अपने सिवाय किसी अन्य को अस्वस्थ देखने से कष्ट विपत्ति होती है, रोगी भी होता है, परंतु स्वयं को यानी अपने को अस्वस्थ देखने से प्रसन्नता, सुख शांति मिलती है, परिवार के साथ मिलाप बढ़ता है।

विभिन्न देशों में छींक संबंधी मनोरंजक मान्यताएं, यानी सुनने वालों अलग अलग देशों में कि छींक आने पर कैसे लोग उनका उनके बारे में सोचते हैं। ब्रिटिश न्यू गियाना के प्योटा जाति के लोग शयन कक्ष यानी स्लाब कमर में छींक को इस बात का सूचक मानते हैं कि आत्मा इस शरीर में वापस आ गई है। गुल्लू जाति के लोग छींक आने के बाद ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। टोंगा जाति के लोग यात्रा आरंभ के समय छींक आने को अपशकुन मानते हैं। जमैका के नीग्रो जाति के लोग मानते हैं कि यदि नाक में खुजली का अनुभव हो तो लोग जातक की बुराई सोच रहे हैं। एस्टोनिया के निवासी यह मानते हैं कि यदि दो गर्भवती स्त्रियां यानी दो स्वांगर औरतें एक साथ छींकें तो वह कन्याओं को जन्म देंगी, और यदि दो पतियों को एक साथ छींक आए तो लड़कों का जन्म होगा। जर्मनी में ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि जूता पहनते समय छींक आ जाए तो उसका अत्यंत शुभ लाभ मिलता है। पर्शिया के लोग छींक आने के बाद ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शैतान से उनकी रक्षा की जाए। यूनानी लोग छींक को देवी कृपा का संकेत मानते हैं।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं तिथियों के अनुसार स्वपन फल, यानी कि जो डेट है, तारीख है, 1, 2, 3 महीने में आती है, अगर उसके अनुसार सपना आए तो उसका क्या फल प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 1 का स्वपन विलंब से फल देता है, 2 तारीख का स्वपन विपरीत फल देता है, 3 तारीख का स्वपन विपरीत तथा विलंब से फल देता है, 4-5 तारीख का स्वपन 2 माह से 2 वर्ष में फल देता है, 6, 7, 8, 9, 10 तारीख का स्वपन शीघ्र सत्य फल देता है, 11-12 तारीख का स्वपन विलंब से फल देता है, 13-14 का स्वपन फल मिथ्या देता है, पूर्णिमा का स्वपन फल अवश्य देता है, कृष्ण पक्ष की 1 तारीख का स्वपन फल मिथ्या, 2 तारीख का स्वपन फल सार्थक परंतु विलंब से, 3-4 तारीख का स्वपन फल मिथ्या, 5-6 तारीख का स्वपन फल 2 माह से 3 वर्ष में, 7 तारीख का स्वपन फल शीघ्र मिलता है, 8-9 का स्वपन फल विपरीत देता है, 10-11-12-13 तारीख का स्वपन फल मिथ्या होता है, 14 तारीख का स्वपन फल सत्य तथा शीघ्र होता है, अमावस्या का स्वपन फल मिथ्या देता है। सुनने वालों, ये सब थे कि तिथियों के अनुसार अगर हमें सपना आए तो उसका क्या फल मिलता है।

सुनने वालों, हम कुछ बातों को अच्छा भी मानते हैं, शुभ मानते हैं, ऐसे ही जैसे हथेली का शगुन। यदि प्रातःकाल जागने पर हाथों की हथेलियों पर दृष्टि पड़ जाए तथा हाथ में कलश, ध्वजा और छत्र हो, तो समझो कि 7 माह तक यानी 7 महीने तक धन का लाभ होता है तथा भावी उन्नति भी होती है यानी तरक्की भी होती है। सुनने वालों,

यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रख लेते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

0: आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। मेरे आवाज के प्यारे सुनने वालों, सेविका शांता जी के प्यार भरे राम राम प्रणाम आज के ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में। तो बढ़ चलते सुनने के लिए हमारे राजेंद्र जी के ओर।
1: फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। आज का जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है कि सूपनखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि वह श्री कृष्ण की पत्नी बन गई। बहुत ही रोचक विषय है। और इसके बाद विषय आता है कि हिंदू कौन है, क्या आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो एक बार इसको ज़रूर आप पूरा सुनेंगे तो आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि सूपनखा कैसे कौन सा पुण्य किया था उसने कि दूसरी लाइफ में श्री कृष्ण की पत्नी हो गई। तो इसी को सबको सुनने के लिए सब श्रोताओं को मेरा आज तहे दिल से शुक्रिया और नमस्कार रहेगा। संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
2: कहने के तो बहुत कुछ है, पर क्या कहे राजेंद्र जी, क्यों ना पहले हम अपने सभी सुनने वालों के लिए वही गीत चला देते हैं जो हरिओम सरन जी हम सब के लिए गा करके छोड़ गए हैं, जो मन से उदास बैठे हुए हैं उन सभी को।
1: जो मन से उदास बैठे हैं उनकी उदासी तो दूर होनी ही चाहिए।
2: जरूर जरूर।
1: और हरिओम सरन जी ने ऐसा एक भजन बनाया है कि सबकी उदासी तकरीबन दूर हो ही जाती है, क्यों ना वो गाना हम पहले सुने और उसके बाद आगे बढ़ें।

0: तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। दोस्तों आज हम सबका जो हमारे विषय है कि
1: हाँ आज का जो संदेश है, हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि संदेश सूपनखा का संदेश है।
0: तो ये बताओ ये कौन सूपनखा है जो जिसका त्रेता में नाक काट दिया गया था?
1: हाँ, रावण की बहन सूपनखा है। त्रेता में लक्ष्मण जी ने उनका नाक और कान दोनों काट दिए थे। ऐसा इसलिए कि उन्होंने थोड़ा सा अनकम्फर्टेबिलिटी महसूस कराई भगवान राम को। चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए भगवान राम से। उन्होंने बोला मैं तो शादी शुदा हूँ, तो उन्होंने बोला लक्ष्मण के पास जाओ। तो फिर लक्ष्मण ने उनको मना किया कि मैं तो यति हूँ, मेरी तो हो नहीं सकती है। तो फिर भगवान राम के पास भेजा, तो फिर उन्होंने उनके पास भेजा, तो लक्ष्मण को गुस्सा आया और नाक कान ही काट दिया कि जा तब कहीं शादी करने लायक न रहे।
2: इसका और गहराई है, पर अब राजेंद्र इतना कह दिए तो इस पे धरो।
0: नहीं, क्योंकि ये बात है, ये एक हम लोग सूरीनाम में होते थे ना, तो रामलीला होते थे, रामलीला राजेंद्र जी
1: जी,
0: तो रामलीला होते थे, तो जिस दिन सूपनखा का नाक कटता था ना, काटी जा, वो दिन तो खास दिन होते थे,
1: काफी
0: हाँ बड़ा भीड़ भाड़ होता था। आश्चर्य की बात है कि बड़ा शायद उस समय पे एक कथा हम समझे नहीं होंगे,
2: पर आपने पूछा तो मैं बता दूं। क्योंकि सीता जी है भक्ति और लक्ष्मण जी को कहते वैराग्य, और वैराग्य और भक्ति के बिना भगवान को नहीं पा सकते।
0: वैराग्य और भक्ति के बिना भगवान को नहीं हो सकता।
2: इसलिए जैसे सूपनखा तुरंत भगवान के ऊपर पास गए और भक्ति और वैराग्य को छोड़ दी, इसलिए उसका उसके साथ ये हाल हुआ।
0: तो दोस्तों ये समझ लेना कि कहीं आप ये दोनों को आप पार करके भगवान के पास पहुंचने का इच्छा कर रहे हो, तो जानने रहना कि क्या होने वाला है। राजेंद्र जी आगे संदेश की ओर बढ़िए, क्योंकि बेचैनी से लोग इंतजार कर रहा है, पर ऐसा क्यों ना पहले हम क्यों ना एक उसी अंतर्गत में एक गीत को जो आपने इतना मेहनत से खोज करके रखे, पहले गीत को सुन लेते हैं तो आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं।
1: जरूर, पहले गीत सुन लेते हैं फिर इसके बाद आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे।

0: वो मेरी पत्नी है सीता, वो मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण।
1: हाय हाय, निम्बू लगता है वो। मरी मरी मरी मरी मरी।

0: मन मंदिर में। मन और मंदिर की जब बात चलती है तो सारे काम सरल से ही हो जाते हैं। बात चल रही थी सुनने वालों सूपनखा की। सूपनखा रावण की बहन और श्री कृष्ण की पत्नी। जी हाँ, ये कथा बहुत ही रोचक है। त्रेता युग से द्वापर युग तक की ये कथा बेहद दिलचस्प है। जानिए सूपनखा ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसे स्वयं भगवान की वधू बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दंडकारण्य की स्वामिनी रावण की अति प्रिय भागिनी सूपनखा के बारे में शायद ही आप ये बात जानते हों कि उन्हें श्री कृष्ण की पत्नी का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आम जन में सूपनखा की छवि एक राक्षसी की है, एक ऐसी सत्री जिसने नककटी होने के बाद श्री राम और लक्ष्मण से बदले की ठानी और युद्ध के लिए रावण को प्रेरित किया, अंत में अपने ही कुल के नाश का कारण बनी। लेकिन इस सब के बावजूद वो श्री कृष्ण की पत्नी बनी, उसका उद्धार हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि कठोर तप के बाद भी ये सुख प्राप्त न कर पाते, लेकिन सूपनखा का ये आशीर्वाद मिला। तो संजय जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? कैसे मिला?
1: अब ये पूछना है, ये वृतांत तो मैं पहला बार सुन रहा हूँ राजेंद्र जी, क्योंकि ये तो ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। अब जैसे आप कह रहे हैं कि संत मुनि ऋषियों जो कितना कठोर तपस्या करते हैं और तभी जाकर के प्रभु परमात्मा से कि उनको प्राप्ति करता है, और ये तो बनमासी किए थे, नाक कट गया था, कान कट गया था, फिर भी प्रभु का प्राप्ति कर लिए, तो इसकी वजह जानना चाहता हूँ राजेंद्र जी। मन बेचैन है और सुनने का इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। दोस्तों, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को एक बार से फिर अभिनंदन करते हुए, और ये जरूर कहना चाहूँगा कि संदेश जो है तो बड़ा ज़बरदस्त है, और हम सब अभी उसके बारे में और भी जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। तो शांता जी, इसमें क्या ये इस बात को आप थोड़ा से भी जानते थे कि ये वृतांत जो त्रेता में हुआ और द्वापर में कैसा मिलन, इसके बारे में?
2: ये त्रेता में जो हुआ, ये जो राम संग राम की कथा में, रामायण में, तो उनका कथा तो मैं बार बार सुनी, पर जो कि भगवान श्री कृष्ण के वधू बनी, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ।
0: तो अब सुनिए आगे कैसे बनी।
2: वही तो हम बेचैन है, हमारे साथ श्रोताओं भी बेचैन है सुनने के लिए।
0: भगवान श्री राम का सानिध्य मिला, कैसे मिला? सूपनखा को न सिर्फ श्री राम से वार्ता का सौभाग्य मिला, बल्कि श्री राम ने उसकी लक्ष्मण जी से भी बात करवा कर भक्ति स्वरूपा आदया शक्ति जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करवा दी। दरअसल इस सब का मर्म सूपनखा के पूर्व जन्म में छिपा है। पूर्व जन्म में सूपनखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। इंद्रलोक की जी।
2: तो इसको शायद कुछ शाप मिला होगा तब ये धरती पर आ गए।
0: हाँ, वही हम आगे बताने जा रहे हैं।
2: अच्छा।
0: उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजिका स्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय या नयनतारा नृत्य करते समय भू संचालन अर्थात आँखों से इशारा भी कर रही थी। ये देखते हुए इंद्र उस पर मोहित हो गई, तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई।

0: वज्रा ऋषि के क्रोध का बनी भोजन। उस काल में पृथ्वी पर वज्रा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने उस समय नयन तारा को ही ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु पृथ्वी पर भेजा, लेकिन वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने अप्सरा को राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि वज्रा से क्षमा याचना करने पर उन्होंने उसे कहा कि ये राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। नयनतारा ने अपनी देह त्याग कर दी और शूर्पणखा राक्षसी के रूप में रावण के घर जन्म दिया। उसने मन में ठान लिया कि वो प्रभु को प्राप्त करके ही रहेगी। यही उसने एक बड़ी गलती कर दी। उसने भगवान राम को वन में देखते ही उन्हें पाने की इच्छा कर डाली। अहंकार मई भी शूर्पणखा थी। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है जो भक्ति और वैराग्य के सहारे ही संपूर्ण होती है, जबकि शूर्पणखा ने ऐसा नहीं किया। उसने भक्ति रूपा सीता माता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास जाकर सीधे ब्रह्म को पाने की कोशिश की। वह सीधे श्री राम को प्राप्त कर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य का आश्रय लेती तो श्री प्रभु को प्राप्त कर सकती, किंतु उसने वैराग्य को भी नकार कर अहंकार में सीधे प्रभु के पास जाना उचित समझा।
1: ये अभी जैसे शांता जी ने कह रहे थे हम सब के साथ ना राजेंद्र जी,
0: जी
1: वैराग्य और भक्ति,
0: हाँ
1: इसी अंतर्गत में तो शांता जी तो काफी जानकारी है आपके।
0: हाँ तो शांता जी तो सब चीज का जानकारी रखती है,
1: अपना पिटारा में लेकर
0: घूमती है तो वो तो सब रखती है।
2: इसलिए कहते हैं सत्संग करो भाइयों।
1: सत्संग में और ऐसे हम लोग के सत्संग वो ज्ञान सरोवर होता है जिसमें हम डुबकिया लगाते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें से निकलते आते हैं। जैसे कि आपने कहा राजेंद्र जी कि हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सुख को ताला किसने लगाया है। तो दोस्तों हम और आगे ये वृत्तांत को सुनने वाले, पर सुनने से पहले राजेंद्र जी क्यों ना एक सुंदर सा गीत हम सब के लिए और चला दे।
0: जरूर जरूर।

0: देख रहा हूँ कि गीत में तो राजेंद्र जी ने पूरा कथा रख दिया और कथा हम लोग यहाँ ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं बना रहे हैं ताकि हम सब के लिए एक सुंदर सा गीत खोज के रखते हैं। और कहावत ये है भी कि परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता है, जीवन के हर कदम पर और हमारी सोच, हमारी व्यवहार एवं हमारे कर्म ही हमारा और भाग्य लिखता है। तो हम सब आज के कार्यक्रम में जो राजेंद्र जी हम सब के लिए सुपनेखा का और वृतांत हम सब के लिए खोज करके लेकर आए हैं और हमारे लिए एक गीत का तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश है इसका लक्ष्य बस यही है कि हमारे जीवन का ज्योति जो है उसमें थोड़ा और प्रकाश आ सके, यही हमारा लक्ष्य है। राजेंद्र जी, कौन सा गीत आप हमारे लिए तैयार करके रखे हुए हैं?
1: गीत बहुत ही रोचक है, बोले राम से सूपनखा मुस्कुराई के कजरी है, अंजू उपाध्याय जी ने गाई है और अमृत अवधि परंपरा की है, बहुत ही अच्छी है, सुनते हैं इसको।

0: मुस्कुराई से बनुआ में आए के ना। बहुत ही अच्छी कजरी जो संजय जी की पसंद आई है। आगे बढ़ते हैं सूर्पनखा के बारे में। सूर्पनखा को उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा, लेकिन बैराणी लक्ष्मण ने उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के बस में हूँ। तब सूर्पनखा भक्ति रूपी सीता माता के पास गई, परंतु वहाँ भी एक भगवतापराध पर बैठी कर बैठी। सोचा, प्रभु इस भक्ति के बस में हैं, अतः मैं इस भक्ति को ही खा जाऊं। अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काटकर अंग भंग कर दिया। इसके बाद सूर्पनखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा कराने विनाशय व दुष्कृतम के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर व दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी।
1: ये पुष्कर कहाँ है राजेंद्र जी? भारत में
0: पुष्कर
1: एक स्थान को भी कहते हैं पुष्कर तो?
0: हाँ, जयपुर के आगे एक अजमेर, अजमेर से थोड़ा सा आगे 35 किलोमीटर पुष्कर है।
1: पुष्कर वहाँ कहते हैं।
0: हाँ, पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का मंदिर भी है, ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही है,
1: एक ही दुनिया पे एक ही मंदिर है ना ब्रह्मा जी का। हाँ, पुष्कर में
0: जी। तो करीब 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने सूर्पनखा को दर्शन दिए और वरदान दिया कि वे 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुबजा के रूप में तुम्हें कृष्ण के पति सुख की प्राप्ति होगी। कुबजा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके वही नयन तारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। और ऐसा ही हुआ। सूर्पनखा को अंत में अप्सरा का मोहक रूप भी मिला और वो भगवान की सहचर्या भी बनी।
1: सहचर्या मतलब?
0: सहचर्या मतलब पत्नी।
1: पत्नी
0: सहचर्या मतलब जो जैसे भगवान है तो उनके साथ साथ आगे का जो वृतांत है उसके साथ देना।
1: हाँ,
0: सहचर्या
1: उसको कहते हैं। सहचर्या
0: उसको सहचर्या कहते हैं।
1: ओ, ये बात हुआ
0: जी।
2: और 10,000 बरस तक ये
0: 10,000 बरस तक उनको तपस्या करना पड़ा तब ये मिला। और हम लोग साल भर एक दो साल एक कुछ हो जाता है तो लोग कहते हैं कि भगवान हमसे रूठे हुए हैं।
1: ऐसा होता है ना?
0: तो ऐसा कहते हैं, इसलिए भगवान कभी किसी से रूठते नहीं है। आप देख लो कि कई लोगों ने तो पूरा लाइफ और कई युग भी तपस्या करी तब जाके भगवान के दर्शन होते हैं, और कलयुग में तो बहुत जल्दी दर्शन हो जाते हैं।
2: ऐसा क्यों?
0: क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग नाम ही भगवान का लेने से जल्दी सुमिर सुमिर करके उद्धार हो जाता है।
2: इतनी आसानी से
0: कलयुग में ये सुविधा है कि क्योंकि लाइफ उम्र कम है, 120 वर्ष तक की उम्र है, वो उसी में सब कुछ करना है, तो इसलिए उसमें शॉर्टकट दिया है।
1: वो तो जल्दी हो जाता है,
0: जल्दी हो जाता है।
1: तो ये तो बढ़िया हुआ, तो बढ़िया समय पे हम लोगों का जन्म भी हुआ।
0: हाँ, एकदम अच्छे समय पे हुआ। और ये समय सदुपयोग करना चाहिए कि बोलना कि अच्छा नहीं है कलयुग। कलयुग बहुत अच्छा भी है।
1: जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं कि सूर्पनखा, ये वृतांत मैं आज पहला बार सुना हूँ जो कि द्वापर और त्रेता का वृतांत, और इसे सुन करके हमें अच्छा लग रहा कि भाई राजेंद्र जी इतना सुंदर संदेश हम सब के लिए रखे। पर राजेंद्र जी, आगे का वृतांत क्या है?
0: आगे का वृतांत तो सूर्पनखा का एकदम समझ ही गए सब लोग, और आगे की वृतांत सुनाने की जरूरत भी नहीं है कि इतना ही वृतांत बहुत है।
1: इतना ही बहुत है।
0: हाँ, आगे का एक बहुत ही सुंदर गाना है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इस क्या बनेगा फिर देखते हैं क्या बनना।
1: चलो सुन लेते हैं कि हमें क्या बनना है।
0: जी जरूर।

इंसान को इंसान बनाया हमने, उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती,

जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरम

0: तू इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा।
1: इंसान के औलाद है इंसान बनेंगे, तो कैसा इंसान बनना आपको?

0: अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव दोनों आवश्यकता है। अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव दोनों आवश्यकता है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे।
1: इस बात पर ये भी कहना चाहती हूँ, कितने भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, कितने भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए,
0: तो सुना दो आगे।
1: अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वो टूट जाए।
0: शांता जी ने बहुत सुंदर संदेश दिए दोस्तों।

दोस्तों आप सुन रहे हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो जो इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक प्रांत में सुना जा सकता है। और ये है कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश, जिसमें हमारा यही लक्ष्य है कि हम अपना जीवन का ज्योति जो जल रहे हैं इसमें कोई भी प्रकार से और भी प्रकाश आ सके। तो हमारी खोजी सेना जो है हम सबके लिए विषय रख देते हैं, और जैसे कि अभी आपने राजेंद्र जी के मुखान से सुने कि त्रेता का वृतांत और द्वापर का वृतांत जो जा कर के हम शायद कभी नहीं सुने होंगे इसके बारे में, तो आज इस बात को हमें भी सुनने को अवसर मिला।

दोस्तों, कहा जाता है कि समय की कीमत, इस पे हमें जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बात किसी ने बड़ा अच्छा से लिखा है कि अखबार जिसे हम क्रांत से जानते हैं ना, तो अखबार से पूछो कि सुबह की चाय के साथ आता है और शाम के चाय तक रद्दी हो जाता है। इसीलिए जिंदगी में जो करना है समय पर कर लो, क्योंकि जिंदगी मौका कम अफसोस ज़्यादा देते हैं। तो हम न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद में आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: विशेष हिंदू शब्द की खोज हीनम दुष्यंती इति हिंदू से हुई थी, अर्थात जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। हिंदू शब्द करोड़ों वर्ष प्राचीन संस्कृत शब्द से है। यदि संस्कृत के इस शब्द का संधि विच्छेद करें तो पाएंगे हीन प्लस दू बराबर हीन भावना से दूर, यानी जो हीन भावना से, हीन भावना समझिला संजय जी?
1: ना ना समझिल, बोले तो
0: खराब भावना,
1: खराब भाव,
0: हीन मतलब पीछे,
1: हीन
0: भाव, खराब भाव, भावना, भावना जो रहे
1: हिंसक के हीन है वो।
0: हाँ, हिंसक के हीन रहे,
2: जो खराब काम कर,
0: हाँ
1: वो ना ठीक है,
0: ना ठीक,
2: ना ठीक काम करे। हाँ।
0: अर्थात जो हीन भावना या दुर्भावना से दूर रहे, मुक्त रहे, वो हिंदू है।
2: खराब काम से जो दूर रहे, हिंसा से दूर रहे, चोरी चपाटी से दूर रहे।
0: हमें बार बार सदा झूठ ही बतलाया जाता है कि हिंदू शब्द मुगलों ने हमें दिया, जो सिंधु से हिंदू हुआ। हिंदू शब्द की वेद से उत्पत्ति है। जानिए कहाँ से आया हिंदू शब्द और कैसे हुई इसकी उत्पत्ति। कुछ लोग यह कहते हैं कि हिंदू शब्द सिंधु से बना और यह फारसी शब्द है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल झूठ फैलाया जाता है। हमारे वेदों और पुराणों में हिंदू शब्द का उल्लेख मिलता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि हमें हिंदू शब्द कहाँ से मिला।
1: तो राजेंद्र जी,
0: जी
1: अगर आप कहते कि लोग ऐसे कहें कि क्योंकि ये तो हमारे इतिहास में शायद लिखे होंगे कोई कुछ लोग कि सिंधु पर, सिंधु है क्या है?
0: सिंधु घाटी की सभ्यता है। एक आपने इतिहास में देखा होगा कि सिंधु एक घाटी है, उसकी पूरी एक सभ्यता है। तो इतिहास में वो बहुत सारा उसका देखने को मिलता है।
1: हाँ।
0: वो एक प्रोग्राम बन सकता है सिंधु घाटी की सभ्यता पे। आप चाहेंगे तो अगली बार वो प्रोग्राम हम धरेंगे यहाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता।
1: काफी जानकारी उस पे,
0: बहुत बहुत ज्यादा
1: तो अच्छा, उसके बारे में एक बार जरूर बात करेंगे। हाँ। पर आज हो रहा है हिंदू का बात,
0: जी
1: सिंधु का नहीं, हिंदू,
0: हिंदू का।
1: शांता जी, आपको इसके बारे में कुछ कहना है?
2: हाँ, तो क्योंकि मुझे आज पता चला भी बहुत सारे चीजें, तो मुझे बहुत गर्व है।
1: सही बात, सब गर्व के बात। ये कार्यक्रम ही ज्योति का प्रकाश ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम लोग के विशेषज्ञ जो हमारे विषय रखते हैं
2: अलग अलग से विषय,
1: अलग
2: हर सप्ताह कुछ
1: से,
2: अलग से हम लाते हैं, इस पे हमारी भी उन्नति होती है।
1: जरूर जरूर, हमारे जीवन के ज्योति में थोड़ा और प्रकाश आ जाता है ना।
2: एकदम।
1: तो राजेंद्र जी सुना दो आगे।
0: हमारे वेदों और पुराणों में हिंदू शब्द का उल्लेख मिलता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि हमें हिंदू शब्द कहाँ से मिला है। ऋग्वेद के ब्रह्मस्पति आगम्य, ऋग्वेद से बृहस्पति आगम्य में हिंदू शब्द का उल्लेख इस प्रकार आया है।
1: उल्लेख के मतलब क्या है राजेंद्र जी?
0: उल्लेख मतलब देखना, जैसे ये इस किताब में हमने ढूंढा और वो लिखा हुआ मिला, उल्लेख, लेख को
1: लिख, जो लिखा हुआ है,
0: जो लिखा हुआ
1: जिसमें
0: है
1: मिल सकते हैं,
0: उसमें मिल सके। किसमें मिलता है? ऋग्वेद के बृहस्पति आगम्य में मिलता है उल्लेख। हिमालयम सभारंभ्य यावतम इंदु सरोवरा तम देव निर्मतम देशा हिंदुस्तानम प्रचच्छते। इस प्रकार मिलता है लिखा हुआ ऋग्वेद में, अर्थात हिंदू से, हिमालय से ही इंदू सरोवर तक देव निर्मित देश को हिंदुस्तान कहते हैं।
2: अच्छा।
0: केवल वेद ही नहीं बल्कि शैव ग्रंथ में हिंदू शब्द का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। हीनम चा दुस्ततेवा हिंदू रिच्चतुच्चते प्रभे, अर्थात जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। इससे मिलता जुलता लगभग यही श्लोक कल्पद्रुम में दोहराया गया है। हीनम दुष्यति इति हिंदू, अर्थात जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। क्यों ना हम एक आप कुछ पूछना चाहें या गाने की तरफ बढ़े?
1: नहीं, इच्छा है कुछ इसी अंतर्गत में जो गीत होगा, कुछ पता नहीं शांता जी पिटारा से क्या छोड़ने वाले हैं।
0: हाँ, पिटारा में जो शांता जी ने छोड़ ही रखा है, हम उसको सुनते हैं।

0: घूमे घूमे घूमे घूंगर, पद्मावती फिल्म का बहुत ही अच्छा जो गाना अभी आपने सुना है।
1: ये फिल्म आपने देखे कि ना?
0: नहीं, मैंने नहीं देखा ये फिल्म, शांता जी ने देखा। शांता जी इसका कुछ वृतांत बता सकती है, लेकिन इस फिल्म पे बहुत हंगामा हुआ।
1: हाँ,
0: था।
1: मैंने भी इस फिल्म के बारे में काफी हंगामा हुआ था भारत
0: और जितना
1: में।
0: हंगामा हुआ उतना ये फिल्म सुपरहिट हो गई।
1: अच्छा, शांता जी आपने देखा ये फिल्म?
2: फिल्म हमने देखा यहाँ शहर में, बहुत जैसा राजेंद्र जी कहा एक सुपरहिट फिल्म है। और अगर इस फिल्म को आपको देखोगे तो आपको जैसे सांस बंद कर कर देखना पड़ेगा।
1: अच्छा, इतना गंभीरता फिल्म है।
2: हाँ।
1: ऐसा क्यों नहीं करते राजेंद्र जी, क्योंकि आप जो वृतांत सुना रहे हम सबके हिंदुत्व के बारे में, उसमें क्या और संदेश है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ किसी ने फिर एक अच्छा संदेश भेजा है।
0: क्यों ना वो संदेश पहले
1: सुना दूं मैं?
0: जरूर,
1: क्योंकि संदेश तो आते रहते हैं और यहाँ संदेश है कि खुशियाँ हमेशा चंदन की तरह होती है, खुशियाँ हमेशा चंदन की तरह होती है, दूसरों के माथे पर लगाओ तो अपनी भी उंगलियाँ महक जाती है। ऐसा ये वृतांत क्यों है? क्योंकि इस पे जब ध्यान दिया जाए कि हम सब कहीं सत्संग और पे जाते हैं ना
2: जी।
1: कहाँ जाते हैं आप सत्संग पे शांता जी?
2: नाम लेना अलाउड तो मेरे
1: नहीं, अलाउड नहीं, नहीं पर जाते मंदिर और ब्यूर्थ हाउस, और उसमें नाम तो नहीं लिया मैंने और बस बोल दिया।
2: हाँ हाँ, ऐसे ऐसे। और हमारे विज्ञानों लोग भी ये मंच पे बैठ के और कथा कहते हैं, तो उसमें से भी आप बहुत सारे चीजें ग्रहण कर सकते हैं।
1: जरूर, तो सत्संग में जाना, पर सत्संग में जाना जैसे कि ये वृतांत सुनाया गया कि खुशियाँ हमेशा चंदन की तरह होती है। और चंदन क्या है? चंदन एक ऐसा वस्तु है जिसे आपको और सिर से माथे से लगाते हैं लोग। कहीं जाओ और चंदन लग के और आप बाहर निकलो तो लोग जान जाएंगे कि ये कहीं सत्संग से आ रहे हैं।
2: और वो ठंडक पहुंचाता है।
1: ठंडक भी पहुंचाते, पर इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि उंगलियां महक जाते।
2: हाँ।
1: और आजकल क्या हुआ राजेंद्र जी, हॉलैंड में ऐसा हो गया है।
0: कैसा?
1: कि हम लोग सलाई के टिक्के में रुई लपेटता है और रुई से और लगा करके चंदन सबके की तो और वाचे से लगाने लगे। तो ये बात है कि कौन उंगली से किसके चंदन लगाना, इसमें भी संदेश होता है। उसी कारण ये वृतांत को लोग लिखे हैं कि वैसे चंदन को चाहिए उंगली से लगाने को। लोग वत स्टाफ से और यानी सलाई के टिकिया में लपेट करके और रुई उसी से चंदन लगाते रहते हैं, पर असलियत में चंदन का महत्व लगाने में कुछ और है। इस पे हम सबको जरूर थोड़ा से ध्यान देना है।
2: आपने कहा उंगली से, तो कौन से उंगली?
1: एक अनामिका से और लगाया जाता है और एक अंगूठा से लगाया जाता है, ये तो मैं बस जानता हूँ कुछ छोटा से। बाद में हम अपने मास्टर जी जो हमारे पैनल के पीछे है उससे पूछेंगे। अगर जब हम लोग थोड़ा जल्दी नहीं करेंगे और बातों बातों में बस यही रुक जाएंगे तो हमारा कार्यक्रम में जो आज हमारे विशेषज्ञों ने,
2: पर अभी ने आपने छेड़ा ना कि चंदन लगाना ये तर्जनी।
1: हाँ।
2: और अंगूठा था, अंगूठा से पुरुष को लगाता लगाया जाता
0: है? तर्जनी ये रहे।
2: अच्छा, तर्जनी
0: इससे नहीं।
1: हाँ, तो राजेंद्र जी ने दिखा दिया कि तर्जनी। हाँ,
0: रिंग
1: फिंगर को कहते हैं अनामिका।
2: अनामिका।
0: हाँ
1: हाँ, और अंगूठा।
2: और अंगूठा।
1: हाँ, और सभी सुनने वाले ने देख नहीं पाए यहाँ से,
2: इसलिए
1: तर्जनी कहते हैं वैज फिंगर। तो राजेंद्र जी, शांता जी को तो ये है कि बस अब बता ही दीजिए, पर अभी अगोल लेते हैं शांता जी।
2: अच्छा,
1: बाद में देखेंगे कि उसके बारे में हम लोग कुछ और।
0: हाँ, आगे बढ़ते हैं।
1: हाँ।
0: परिजात हरण में हिंदू को कुछ इस प्रकार कहा गया है, हिंद

विधीयते, अर्थात जो अपने तप से शत्रुओं का, दुष्टों का और पाप का नाश कर देता है वही हिंदू है। माधव दिग्विजय भी इन्हीं शब्दों को कुछ इस प्रकार उल्लेखित किया गया है, वो हम सुनाएंगे इस गाने के बाद। तो बढ़ते हैं, क्यों ना एक गाना सुनेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे।

0: प्रेम की गंगा बहाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो। संजय जी, आपने कौन सी जोत जलाई आज?
1: आज मैंने ये जोत जलाई कि ज्योति का प्रकाश, ज्योति का प्रकाश का जोत धीरे धीरे जल रहा है। और अभी तो शांता जी ने ऐसा प्रश्न रख दिया है कि कार्यक्रम में ये विषय था ही नहीं, पर इसके बारे में तो कुछ न कुछ बोलना ही पड़ेगा। और अब देखा जाए कि कैसे,
2: क्योंकि लाभदायक है और जानकारी इसमें है।
1: लाभदायक और जानकारी भी है। राजेंद्र जी, तो ऐसा क्यों ना थोड़ा से इसके बारे में हम सबको सुना सकते हो आप, या हम सब?
0: हाँ जरूर, जो रिंग फिंगर रहे
1: रिंग फिंगर,
0: उसको तो लेडीज को तिलक लगाया जाता है ज्यादा करके।
1: हाँ,
0: ये छोटा तिलक, अगर पुरुष को भी लगाया तो छोटा रूप में।
1: हाँ जी,
0: जो अंगूठा रहे तो उसको राजपूत जैसे तिलक लगाते हैं, नीचे से ऊपर तक,
1: नीचे से ऊपर।
0: हाँ, बड़ा वाला।
1: हाँ,
0: और जो तीन उंगली रहे बराबर,
1: हाँ,
0: उसे चंदन लगाते हैं, त्रिकुट।
1: त्रिकुट
0: जो लोग, कुछ लोग पंडित लोग त्रिकुट लगाते हैं, या शंकराचार्य लोग जो लगाते हैं,
1: हाँ जी,
0: वो इसी से लगाते हैं। तो इस प्रकार तिलक के बारे में जो बात आप कर रहे थे, ये है, ऐसा है।
1: पर राजेंद्र जी, एक छोटा सा प्रश्न
0: जरूर।
1: आपने कहा नीचे से ऊपर, ऐसा हाँ, क्यों?
0: क्योंकि ये एक, ये इस जगह पे भी जो चक्र है, आज्ञा चक्र है,
1: आज्ञा चक्र,
0: हाँ, उस चक्र को हम लोग एक वो देते हैं कि यहाँ पे जो तिलक है उसका प्रभाव उसमें रहता है, और वो आगे चक्र जो है चंदन लगाने से ठंडा रहता है, और एकदम ज्योति, उससे ज्योति का जो आप हम लोगों को प्रोग्राम है,
1: ज्योति का प्रकाश,
0: तो वहीं से ज्योति का प्रकाश भी होता है।
1: सही बात, सही बात। अच्छा, सुंदर संदेश आपने दे ही चुका है हम सबको। शांता जी, इसमें कोई शक?
2: बिल्कुल नहीं, पर हम ये खुशकिस्मत समझते हैं कि अपनी किस्मत को कभी दोष मत देना, है ना? अपनी किस्मत को कभी दोष मत देना। इंसान के रूप में हमको जन्म मिला है, तो ये किस्मत नहीं है तो और क्या है भला?
1: इंसान के रूप में हमें जन्म मिला है तो ये किस्मत है कि
0: नहीं तो क्या भला?
2: हाँ, ताकि हम चंदन लगा सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं।
1: ये तो बहुत सौभाग्य के बात होता है, क्योंकि 84 लाख योनियों में से इंसान का योनि, यहाँ तक कि मैंने सुना है देवताओं भी ऐसा शरीर के तरसते। और हम सब यहाँ पर खास करके ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम बनाने के लिए सेवा के अंतर्गत यहाँ पहुँच गए हैं, और हम लोग के भी ऐसे इसमें मगन होना, इसमें संदेश छोटे छोटे रूप में हम सब के लिए खोज खोज के रखा जाता है। और हम सभी ये कार्यक्रम द्वारा आपके घर में, आप चाहे जहाँ भी हो, ये कार्यक्रम को 188 देशों तक सुना जा सकता है। कहीं भी हो आप ये कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, तो आपको और ये संदेश छोटे रूप में हम सब यहाँ से अपने जीवन के ज्योति के प्रकाश डालने के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं। राजेंद्र जी, आगे का वृतांत क्या है?
0: हाँ, आगे का जो वृतांत हमारा चल रहा था, आगे का वृतांत माधव दिग्विजय जी के अनुसार,

0: हिंदस दूषक, अर्थात वो जो ओमकार को ईश्वरीय धुन माने, कर्मों पर विश्वास करे, गौपालक रहे तथा बुराइयों को दूर रखे, वो हिंदू है। केवल इतना ही नहीं, हमारे ऋग्वेद में विव हिंदू नामक के बहुत ही पराक्रमी और दानी राजा का वर्णन मिलता है, जिन्होंने 46,000 गौ माता दान में दी थी, और ऋग्वेद मंडल में भी उनका वर्णन मिलता है। बुराइयों को दूर करने के लिए सतत प्रयासरत रहने वाले सनातन धर्म के पोषक व पालन करने वाले हिंदू हैं। हिंदुस्तु दुरितामह, अर्थात हिंदू सब लोग सदा ही शुरू से रहे हैं और रहेंगे, तो दुरितामह। आप इसके बाद हम चलते हैं एक सुंदर सा गीत की ओर, और इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
1: राजेंद्र जी, सुंदर से गीत की ओर आगे बढ़ेंगे, पर आज बस यही प्रश्न है, क्योंकि हमारे साथ हमारे भाई रॉय जी जो आइंदहोफ शहर से यहाँ उपस्थित है स्टूडियो में है, और हम सब सूरीनामी है, तो क्या सूरीनाम हमारा प्यारा देश आज आप चलाने वाला है कि कार्यक्रम में हम लोग का बिल्कुल समय नहीं है?
0: नहीं नहीं नहीं, वो जरूर चलेगा, क्योंकि आज यहाँ पे तीन लोग सूरीनाम कहते, सूरीनाम हमारा प्यारा देश क्यों नहीं चलाया जाएगा
1: एकदम से
0: एकदम से। लेकिन उससे पहले कोई दूसरा गाना रहेगा, इसके बाद हो रहा
1: जरूर जरूर
0: जरूर।

तोरा मन दर्शन करवाए। बहुत ही अच्छा, मन दर्पण जो है, मन का दर्पण का मतलब होता है, दर्पण मतलब होता है शीशा, ऐना। और जब शीशा के सामने हम खड़े होते हैं तो हमारी ही शकल उसमें दिखती है, तो वैसे तो हम देख नहीं सकते अपनी शकल, लेकिन एक शीशा, शीशा मतलब दर्पण, जो सामने है वो दिखेगा, वही एक चीज़ है जो दिखा सकता है, दर्शा सकता है। तो अपने आप को अगर देखना हो तो शीशा में, वैसे मन दर्पण।

0: जी
1: व्यक्ति ने बोला कि मेरे दादा ने, हम लोग कहते आ जाना,
0: हाँ,
1: दादा ने अपने कमरे से एक बड़का दर्पण लगाए थे।
0: हाँ।
1: उन्होंने कहा कि वो रोज बाहर निकल के अपने सभी कमरों में दर्पण लगाए थे छोटे छोटे
0: जी,
1: पर अपने कमरे में एक इतना बड़ा दर्पण लगाए थे जिसमें वो पूरा शरीर दिखता था।
0: हाँ।
1: तो वो कह रहे थे कि मेरा दादा में ये था कि रोज वो बाहर जा करके जब लौट करके आए तो वो उसी दर्पण में देख करके अपने आप से ये प्रश्न करते थे
0: जी।
1: कि क्या हमने ठीक किया या क्या हमने गलत किया
0: जी।
1: तो उससे वो, उसे वो सीख मिलता था कि कुछ गलती हो जाता, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे कुछ गलती हो ही जाता है, उसी से वो अपना गलतियों को संभालते थे कि, क्योंकि वो रोज अपने आप को देख करके अपने आप में वो प्रश्न रखते थे और प्रश्न रख करके और अपने आप में सुधार कोशिश करते थे रखने को। तो इसी प्रकार से वो अपना और बनाए थे। आगे के कार्यक्रम में जैसे कि मैं देख रहा हूँ तो शांता जी भी कुछ तैयारी करे हैं, और शांता जी आज मैं ऐसा आपके तैयारी की ओर नहीं जाऊंगा, पर एक ऐसा प्रश्न रखना चाहता हूँ आपसे।
2: मैं तैयार होकर आई हूँ।
1: पर शांता जी, कभी आपने किसी को सिर से चुरकी देखे?
2: हम बहुत ऐसे लोगों को देखती हूँ।
1: आप हमें देख रहे हो पर हमारे सिर से आप दिखाई नहीं देंगे।
2: चुरकी नहीं, राजेंद्र के सिर पर है चुरकी। एक ये कहते हैं पंडित जन को एक चुरकी ऐसे लगाते हैं ना।
1: हाँ जी। हाँ।
0: ये रहे नमन।
1: हाँ।
2: वही तो हम देख रहे हैं।
0: एंटीना।
1: एंटीना।
2: एंटीना। हाँ।
1: हाँ। तो क्या उसका मतलब आपको पता है?
2: हाँ, मुझे पता है। उसके बारे में खोजबीन की तो मुझे कुछ हासिल हुआ। तो आपने पूछे सही वक्त पर सही प्रश्न, तो उसके बारे में आप जानना चाहते हो?
1: उसी लिए तो ये प्रश्न को रखा गया शांता जी।
2: अच्छा, तो हम बता दें कि हिंदू धर्म में ऋषि मुनि सिर पर चोटियां रखती हैं, सिर पर चोटियां रखते हैं। आज भी लोग रखते हैं, वो तो सही। हम भी जब मंदिर जाते हैं या सड़क पर कहीं भी ऐसे व्यक्ति जो पास होते तो हम देख लेते हैं, तो जान पे पड़ता है कि ये कोई है। तो वैज्ञानिक तर्क ऐसा है कि जिस जगह पर चोटियां रखी जाती है, हाँ ये सिर पर ना, जिस जगह पर चोटियां रखी जाती है उस जगह पर दिमाग की सारी नसें आकर मिलती है, समझा?
1: तो उसी दिमाग, और आसान से कैसे आप कह सकेंगे
2: कि वहाँ पे नस जाकर जुट एकत्री होते हैं,
0: इससे एकत्रित,
2: हाँ एकत्रित, एकत्रित।
0: हाँ, यानी कि
2: इससे दिमाग स्थिर रहता है और इंसान को क्रोध नहीं आता।
1: चुरकी रखने से क्रोध नहीं आएंगे अभी, ऐसा?
2: ऐसा। और उससे भी है कि आप अभी अपना इंद्रिय और जो भी है ना उसको भी काबू में रखें,
1: अपने आप के कंट्रोल में,
2: अपने आप को कंट्रोल में। हाँ, तो ऐसा है कि चुरकी के महत्व
0: बहुत ही विशाल महत्व।
2: हाँ, सोच और तो, सोचने की क्षमता भी बढ़ती है कि जो अंतेना है इसका मतलब क्या है।
1: आप भी चुरकी रखा है?
2: अभी राजेंद्र जी ने कहा ना उसका अंतेना है।
1: राजेंद्र जी ऐसा क्यों, ऐसे करते क्यों, एक गीत के ओर बढ़ते हैं और गीत के बाद में फिर थोड़ा से सूरीनाम हमारा।
0: हाँ,
1: प्यारा देश।
0: गीत के भी बहुत अच्छे बोल हैं कि यह है गीता का ज्ञान, वो जरूर हम बढ़ाएंगे।

0: बस मरने ही वाले हैं देवी, इनका अंत निकट है।
1: तथास्तु।
2: इन दोनों दुष्टों ने मिलकर कैसी चाल चलाई, एक कंस मामा बन बैठा एक दुर्योधन भाई।

0: कन्या तरसती है, स्वयं दर्शन देने आ रही है।
1: पहुँचा हुआ है साधु, क्या क्या चमत्कार दिखलाए। बोली जनता, बोली ईश्वर रूप बदल के आए।
0: ये जनता की भूल है देवी, ये महापापी है, घोर अपराधी है।
1: अच्छा

तू रोज पखंड रचाए, ऋषियों को बदनाम करे, संतों पे दाग लगे।

0: ये है गीता का ज्ञान।
1: गीता का ज्ञान अभी संजय जी आपने बड़ा ही अच्छा ढंग से सुना है, जो कि जिसकी फिल्म जो ऋषिकेश में बनी थी, और फिल्म में बहुत लोगों ने सराहा है उसको।

सूरीनाम हमारा प्यारा देश, तीन लोग आज यहाँ सूरीनाम के बैठे हैं तो उनका प्यारा देश इतना अच्छा है कि सब लोग एकदम झूम उठते हैं। अब बढ़ते हम आगे, लागी छूटे ना सनम अब तो, क्योंकि अब हमारा समय जो स्टूडियो से विराम की ओर बढ़ता है, तो चलते हम, लागी छूटे ना सनम अब तो सनम।

लागी छूटे ना अब तो सनम चाही। ये जो जब ये गीत आता है, जब ये गाना बजता है, तो सब लोग और हम लोग भी यही देखते हैं कि अब हमारा हमारे श्रोता गण जो कि हमको इतने प्रेम से सुनते हैं, वो उनका भी मन कहीं ना कहीं इस गाने से ये लगता है कि हमारा पूर्ण कार्यक्रम पूर्ण की तरफ आगे हो रहा है, यानी कि और इस गाने से बहुत ही सबको और हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है कि लागी छूटे ना, अब तो छूटना ही है। दोस्तों, सुनने वालों, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। सुनने वालों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि जो हमारा इतना प्रोग्राम सुनते हैं और पसंद करते हैं। फ़ोन भी आता है, मैसेज भी आते हैं, बहुत अच्छा, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली बार, नमस्कार।

0: जब से
1: जिंदगी दो पल की है, जिंदगी दो पल की है, मजे में जी लो, वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त की बात है यहाँ, इसलिए कल को छोड़ो आज में जी लो। प्यारे सुनने वालों, देने सुनने के लिए बहुत से धन्यवाद। जो हमसे अनजाने में गलतियाँ हो गई हो तो माफ़ी हम आपसे मांगते हैं, स्वीकार कीजिए। सभी का शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम।

हौसला को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी के ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। फाहुन रेडियो के सभी सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम सब आज फिर और इकट्ठा होकर के कार्यक्रम को ज्योति का प्रकाश जो आपके लिए प्रस्तुत किया गया। आशा यही है कि अगले सप्ताह आप जरूर सुनते रहना। हमारे साथ सहयोग दिए शांता खिमाई जी, राजेंद्र सिंह जी जो पनेल के पीछे बैठे हुए हैं, और मैं हूँ आपका सेवक संजय। सभी को एक शुभ दिवस। नमस्कार।

और यहां से हम अपना कुछ प्यारे प्यारा प्यारे प्यारे लवली सॉन्ग भी आप लोग को हम सुनाएंगे। और कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, कहते हैं तू हजार बार भी रोते तो मना लूंगा तुझे, तू हजार बार भी रोते तो मना लूंगा तुझे, मगर देख मोहब्बत में शामिल कोई दूसरा ना हो। जब अगर मोहब्बत में कोई और आ जाएंगे तो कैसे मनाऊंगा। और कहते हैं कि किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, तड़प कर तू मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफा का वो इम्तिहान वो इंतजाम रह रही है। एक बार फिर दोस्तों, किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, तड़प कर या मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफा का वो इल्जाम दे रही है। दोस्तों हम चलते गीत की ओर कि बोल मेरे तकदीर में क्या है और मेरे हम सफर अब तो बता। और इस गीत को आओ मिलकर सुना जाए, प्यार भरी गीतों के बहार प्रोग्राम हम लेकर चलते हैं। मैथिली मुकेश नाइटिल के लता जी इस गीत को गाया है, आओ सुना जाए।

भूल मेरी तकदीर में क्या है और मेरी हम सफर अब तो बता। और फिल्म के नाम है हरियाली और रास्ता। दोस्तों जॉनी नंबर वन है। आप लोग को हम बता देते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है हर शुक्रवार को शाम को 6 से और रात्रि के 9 बजे तक चलते हैं। मंगलवार को दिन में 5 से 6 बजे लेक सुरिनामी न्यूज और रविवार की सोमवार को दिन में 1 बजे हमारा सुरिनामी न्यूज है दोस्तों। और आपको हम बता देते हैं कि लोग जो इसको मालूम नहीं है हमारा फ्रिक्वेंसी जो है हम सब AM पे अब नहीं है दोस्तों। दिस मीन्स दी डेंक ए हमारा रिवाम कुछ भले नहीं मीन से आशी अंदेया बी प्लस रेडियो है दम पास क्वेंटी ऑन लाइस्टर ऑफ अलेन ऑफ द इंटरनेट। और हमारा फ्रिक्वेंसी है 195.93 मेगा हर्ट्ज पर ऑफ नहीं कनाल 8A डीएबी प्लस रेडियो पर हमारा प्रोग्राम रेडियो फाहून के प्रोग्राम आप सुन सकते हैं, अपने गाड़ी में भी सुन सकते हैं दोस्तों। और हम कहते हैं यहाँ पर कि कहते हैं मरे तो लाखों होगे तुझ पर, मरे तो लाखों होगे तुझ पर, मैं तो तेरे साथ जीना चाहता हूं दोस्तों। मुझ पे पाने को मुझे पाने के तुम जिद ना करो, मुझे पाने का तुम जिद ना करो, किसी को चोरी हुई मोहब्बत हूँ मैं किसी की चोरी हुई मोहब्बत हूँ मैं दोस्तों। और यहाँ से हमारा प्यार भरी गीतों का और बाहर नामक प्रोग्राम हम चलाते हैं लाइव रेडियो फाहुन के माध्यम से हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और हम चलते हैं फिल्म ब्लैकमेल के ओर हम चलते हैं। पल पल दिल कोई पांच किशोर साहेब ने इस गीत को गाया है, आओ मिलकर सुना जाए।

और पल पल दिल के पास सिर्फ तुम ही रहती हो। किशोर साहब ने इस गीत को सुनाया है, फिल्म का नाम है ब्लैकमेल। और दोस्तों कहते हैं जिंदगी के कुछ लम्हे, जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होते हैं, जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होती है, यादों में कुछ लोग खास होती है, यादों में कुछ लोग खास होती है। यूं तो वो दूर होता है नजरों से, पर उनकी एहसास दिल के पास होती है। प्यार करने वालों के लिए कुछ प्यार भरी शायरी आप लोग को हम सुनाते हैं कि तेरे हर नाकामी को कामयाबी में बदल दूंगी, तेरे हर नाकामी को कामयाबी में बदल दूंगा, तेरे हर सपनों को हकीकत में बदल दूंगा। ऐ दोस्त हम खुदा से दुआ ऐसी करेंगे कि तेरे हर गम को खुशी में बदल देंगे। कुछ प्यार भरी शेरें हम आप लोग को और सुनाते हैं दोस्तों। आओ चला जाए एक और गीत की ओर, और वो है और वो भी फिल्म हरियाली और रास्ता कहे, जो निकटतम 2006 का ये फिल्म है। मनोज कुमार और मालहा सिन्हा इसमें काम किया है। आओ चलकर और इस गीत को मजा लूटे।

चला हूँ और खुद उसके और क्या क्या प्यार भरी मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को और सेवा करेंगे। दोस्तों अपनों के बीच बेगाना हो गए हम, अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, प्यार का लम्हे अनजानी हो गई है। जहाँ पर फूल खिलते थे, जहाँ पर फूल खिलते थे कभी, आज वहीं पर वीरान हो गई है। ये बात है दोस्तों, जो शख्स तेरे तस्वीर से ही महक जाए, जो शख्स तेरे तस्वीर से ही महक जाए, सोचो तुम्हारे दिलार में उसका क्या होगा। हमारे प्यारे सुनने वालों, तो हम चलते हैं एक गीत की ओर, वो है कभी कभी का, फिल्म कभी कभी का ये गीत है, मैं पल दो पल का।

और इस गीत के बाद में हम चलते हैं एक मोहब्बत भरी गीत की ओर। लोग बचपन पर बहुत प्यार किया है और जो बचपन पे किसी को प्यार किया है उस सब के लिए यहाँ पर एक शेर है, जिंदगी का पहला प्यार कौन भुलाता है, जिंदगी का पहला प्यार कौन भुलाता है, ये पहली बार होता है जब कोई किसी को खुद से बढ़कर चाहता है, उसकी पसंद उसकी ख्वाहिश मिल खुद से को भूल जाता है, अकेले में उसका नाम लिख लिख कर मिटाता है, दोस्तों बात करने से पहले सोचता है क्या कहना है, बात होने के बाद फिर भी कुछ रह जाता है, होता है खूबसूरत कितना पहला प्यार, होता है खूबसूरत कितना पहला प्यार, ना जाने क्यों अक्सर अधूरा रह जाता है पहला प्यार। तो सबके लिए यहाँ पर हम एक गीत को चलाते हैं कि बचपन का प्यार कभी भुलाना नहीं, आओ मिलकर सुना जाए।

और बचपन की मोहब्बत को दिल से दुआ करना। और दोस्तों, प्यार भरी गीतों का बहान प्रोग्राम हमारा चलते हैं। और कहते हैं, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना है हमारे प्यारे दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने क्या था और मुझे हुआ था। उसने किया था और मुझे हुआ था। दिट इज गवेल्दिग मोई दोस्तों, कोर्ट मार हेल मोई। मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसे किया था, उसने मोहब्बत किया था और मुझे मोहब्बत हुआ था। हमारे प्यारे दोस्तों, ये सब प्यार भरी शायरे और आपको हम यहाँ से सुनाते हैं कि जाओ जाओ जाओ ढूंढ लो, हम सबसे ज्यादा चाहने वाला मिल जाए तो खुश रहना। जाओ ढूंढ लो, हमसे ज्यादा चाहने वाला मिल गया तो खुश रहना। ना मिली तो हम फिर भी तुम्हारे है। ये सब बातें हैं दोस्तों जो दिल को छू कर और निकल जाता है। हम चलते हैं एक गीत की ओर जिसमें शमी कपूर काम किया है, राइसी संगे पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये गाना है और ये है, ये गीत है, और मेरी मोहब्बत जवान रहेगी। मेरी मोहब्बत जवान रहेगी यानी कि मोहब्बत कभी बुढ़ाते नहीं है, उम्र चले जाते हैं दोस्तों लेकिन मोहब्बत जवान रहती है। ये हमारा पैगाम है रेडियो फोन के माध्यम से, आओ सुना जाए।

और दोस्तों मेरी मोहब्बत जवां ही रहेगी। और ये परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत है और मोहब्बत भरी प्यार भरी लवली सॉन्ग यहाँ से हम और प्यार भरी हार्टब्रोकन सॉन्ग्स और कुछ यादें हम आप लोग को यहाँ से चलाते हैं कि कहते हैं समझाता ही नहीं वो मेरे अल्फाज की गहराई का, समझता ही नहीं वो मेरी अल्फाज की गहराई, मैंने हर लफ्ज का दिया जिसे मोहब्बत कहता है, मैंने हर लफ्ज कहा दिया कह दिया जिसे मोहब्बत कहता है। दोस्तों एंड ब्रोकिंग्स हार्ट शायरी यहां से हम आप लोग को एक दो सुनाते हैं। तुमसे मोहब्बत तेरी अवकांश से ज्यादा की थी, तुमसे मोहब्बत तुमसे प्यार तुमसे मोहब्बत तेरी अवकाश से भी ज्यादा की थी, अब बात नफरत की है सोच सोच तेरा क्या होगा। माना कि मुझे प्यार करना नहीं आता, माना माना कि मुझे प्यार करना नहीं आता, पर तू बता कि तुझे डील तोड़ना किसने सिखाई है। ये तो भी होता ना हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों रेडियो का। हम चलते हैं आशीष जी के एक रोमांटिक सॉन्ग है परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत है और चला जाए फिल्म के नाम है प्यार का सौदा नहीं। दोस्तों प्यार का सागर फनी कति होंदत एन एनन सस्तक आओ चला जाए सुनने को कि मोहम्मद रफी और आशा भोसले क्या गाया है।

प्यार की जिंदगी देने वाली। दोस्तों कितने लोग कहते हैं, बोले जॉनी तू सिर्फ प्यार भरी गीतों को चलाते हैं, लेकिन हम अपने जिंदगी में बेवफा बहुत हमको मिला है और बेवफाई भी बहुत हुआ है दोस्तों। और जितने लोग बेवफाई के रास्ते से गुजरा है वो सब के लिए यहाँ पर हम कुछ बेवफा का शेर लेकर आया है और एक गीत भी लाया है। कहते हैं फिर से तेरे महफिल में चला आया हूँ, फिर से तेरे महफिल में चला आया हूँ, अंदाज वही है, अंदाज वही है, बस अल्फाज नया लाया हूँ, भूल तो जाऊं तुझे दोस्तों। और कहते हैं भूल तो जाऊं तुझे पर मेरे पास रहेंगे क्या कुछ, यानी कि बेवफाई का हम आपको शेर सुनाते हैं कि कितनी लोग बेवफा के रास्ता से भी गुजरा है, ठोकर लगा है, दिल टूट गया है, वो सब के लिए भी यहाँ पर हमने कुछ रखा है। अब जुदाई का सफ़र को मेरे आसान करो, अब जुदाई का सफ़र को मेरे आसान करो, तुम मुझे ख्वाब में आकर ना परेशान करो, तुम मेरे ख्वाब में आकर और ना परेशान करो। और तो क्या था बेचैनी के लिए अपनी आंखों के ख्वाब बेच आई है हमने। तो दोस्तों ये सब एक दो बेवफाई का गीत आपको हम सुनाते हैं, आओ सुना जाए।

और तेरा मासूम चेहरा भूल जाने को काबिल नहीं है। और दोस्तों मोहम्मद अजीज ने इस गीत को गाया है और कहते हैं, कुछ ऐसा हंसने भी जिंदगी में होता है, कुछ ऐसा हादसा भी जिंदगी में होता है कि इंसान बच तो जाता है मगर जिंदा नहीं रहता है। दोस्तों ये तो भी कभी कभी बात होता है ना कि प्यार में अब ये शामिल करना है, वो सच कहना है, वो सच कहे ना कहे हम अतबार करना है। तो ये सब बात है दोस्तों। इस गीत जो है, इस गीत को इस फिल्म में सुनील दत्त और माला सिन्हा ने काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए।

और तुझको मेरा प्यार पुकारे, फिल्म के नाम है गुमराह। आशा भोसले महेंद्र कपूर का ये गाना है और म्यूजिक दिए थे रफी साहब ने। फिल्म का नाम था गुमराह। जिस फिल्म में काम किया सुनील दत्त, माला सिन्हा। और दोस्तों और ये प्यार भरी गीतों का बहार सॉन्ग हम आपको सुनाया है। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और हमारा प्रोग्राम चलाना है, हमारा काम यही है, हमारा मोहब्बत भरी पैगाम। यहां से कुछ पुराने नगमे, कुछ नए गाने से आज हम आप लोग को और सुनाएंगे। हम चलते तुरंत इधर चला मैं उधर चला, फिल्म के नाम है कोई मिल गया। ऋतिक रोशन प्रीति सिन्हा इस फिल्म में काम किया है, इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक। आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों क्या किया और क्या किया, आज हम आप लोग को कुछ नया और पुराने गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे दोस्तों। और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा एक गीत है जो नैथिल के लता जी और उदित नारायण को गाया हुआ गीत है। इस फिल्म का नाम है वीर जरा, शाहरुख खान और प्रीति सिंधा का ये गीत आप लोग सुना जाए।

देश है मेरा और ऐसा देश है तेरा। जितने लोग दुनिया पे है हमारे प्यारे सुनने वालों, अपना देश सबके प्यारा होता है। चाहे आप भारत में हो या सूरीनाम में हो या पाकिस्तान में हो या जहां भी हो, अपना देश सबका प्यारा है। चाहे वो देश आपका जैसा भी हो, लेकिन तुम्हारा अपना ही देश है। और चलते हैं हम और आगे को, सातों जन्म में तेरा ही रहेगे। फिल्म के नाम है दिलवाला। कुमार शानू और अलका याग्निक इस गीत को गाते हैं।

जन्म तक हम तेरे रहेंगे, ये क्या मुमकिन है? सात जन्म तक किसके साथ रहे? एक जन्म मेरे भैया कहीं कहीं उल्टा सीधा हो जा है, सात जन्म में भला क्या होगा? सोचो तो, हम चलते हैं एक गीत की ओर। औ है खलनायक, खलनायक की ओर, और पलकी में होगे सवार, पलकी में होगे सयार। आओ सुना जाए।

बस पालकी में होके और सवार चलिए। कल का यानी फिल्म का नाम है खलनायक, जिस फिल्म में माधुरी दीक्षित संजय दत्त ने काम किया है और गीत को गाया है अलका याग्निक। और हमारे प्यारे सुनने वालों, हमारे दोस्तों, यहाँ से प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हम चलाते हैं। अगर जो आप किसी के ऊपर दीवाना हो गया है, अगर जो किसी के ऊपर आप दीवाना या दीवाना हो गया है, दिल दे चुका है, तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। आओ देखो क्या है।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 20 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रा

क्या खूब फरमाए कि अगर तुम साथ हो तो धीरे धीरे गम जो है वो भी फिसल जाता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सौ गड़ा, ऋतु आए फल होई। अर्थ इसका है, हालात चाहे जैसे भी हो, हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। हालात जैसे भी हो, हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एक ही दिन 100 घड़ा पानी किसी पेड़ में डाल दे, तब भी वो पेड़ में फल समय आने पर ही लेगा। आप जुड़े हैं फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से, मेरे आप सभी को बहुत सारे प्यार मिले।

एक सॉन्ग आपके लिए यहाँ से चला दिया जाता है, रिश्ते के पहचान। मेरे प्यारे सुनने वालों, रिश्ते के पहचान सुनिएगा। लोग कहते हैं कि सिर्फ एक गलती से, गलत फैमिली से अच्छा से अच्छा रिश्ता तोड़ देती है। गौर से सुनिए, लोग कहते हैं कि सिर्फ एक गलती से, यानी कि एक गलत फैमिली से अच्छा रिश्ता तोड़ देते हैं। एक गलत फैमिली से अच्छा रिश्ता टूट जाता है, तो फिर आप सब बताइए कि जो रिश्ता एक गलत फैमिली से टूट गया, वो रिश्ता अच्छा कहाँ से हुआ? आप ही तो बताइए कि जो रिश्ता एक गलत फैमिली से टूट जाए, वो रिश्ता कहाँ अच्छा हुआ? इसका मतलब है कि वो रिश्ता मौका ढूंढ रहा था सिर्फ एक गलती के लिए, जो नहीं होना चाहिए। रिश्ता सच्चा और अच्छा हो तो जो हजार गलतियां के बाद भी टिका रहे, बना रहे। रिश्ता सच्चा और अच्छा तो वो होता है जो हजार गलतियों के बाद भी टिका रहे, बने रहे। ये मेरे सुनने वालों कि रिश्ता सच्चा और अच्छा वो होता है जो हजार गलतियों के बाद भी टिका रहे, बना रहे।

सुंदर साहब गीत जो यहाँ से हमने श्रवण की है मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में। हम अक्सर सुनते हैं कि कलयुग आ गया है, कलयुग का समय चल रहा है, तो प्रश्न उठता है ये कलयुग लाया कौन, ये कलयुग लाया कौन मेरे दोस्तों। लोग कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, पर लाया कौन ये सवाल उठता है। स्त्री ज्यादा तौर पे स्त्री अपना शर्म भूल गए, पुरुष अपना संस्कार भूल गया, गुरु अपना धर्म, नेता अपना कर्म, नेता अपना कर्म, और तो और इंसान अपनी इंसानियत भूल गए। तो आप बताओ कलयुग लाया कौन। ये सच में एक सोचनीय वाला बात है कि कलयुग लाया कौन।

हो मोरे रामा, अजब तेरी दुनिया, रफी जी की आवाज में यहाँ से हमने श्रवण कर लिए। जीवन के कुछ नियमों जो जीवन में उतार सके, जीवन के कुछ नियम जो हम अपने जीवन में उतार सके तो जरूर से उतारे, और वो हम यहाँ से एकाध जो है उसको बता देती हूँ। मेहनत से पीछा हटाना नहीं, जरूर हमेशा मेहनत करना, जरूर आगे बढ़ेंगे। मेहनत से पीछा हटाना नहीं मेरे दोस्तों। बदलने वाला दोस्त बनाना नहीं। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ जाना नहीं। अगर दुख आए तो घबराना नहीं। मुस्कुराने की आदत कभी छोड़ना नहीं। सदा मुस्कुराते रहे। आंखें बंद करके दूसरों पर विश्वास करना नहीं मेरे दोस्तों। आंख बंद कर दूसरों पर विश्वास मत करना। सत्य पर रूठे जाए उसे मनाना नहीं, और जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं। सरल से बात यह है।

रफी जी की आवाज़ में यहाँ से हमने एक बार फिर श्रवण की है। मेरे प्यारे दोस्तों, दूर दूर से आप श्रवण कर रहे फावन हिंदुस्तानी रेडियो को, और आपको हम यहाँ से दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। कल की चिंता छोड़िए यारो, जी हाँ, कल की चिंता छोड़िए, आज में ही जी लो, क्योंकि जिंदगी का जिंदगी से दूर होने में वक्त नहीं लगता। छल कपट और पाप उतना ही करना मेरे दोस्तों, छल कपट और पाप उतना ही करना चाहिए जितना भोगने की शक्ति हो, क्योंकि झूंकि मेरे दोस्तों कर्म किसी का भी नहीं छोड़ते, कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते।

तेरा मस्त मगन लहराए, सुंदर सा रोमांटिक गीत आपके लिए पेश किया जाता है। द एनख एख्त फाउन जिस पर आप चुने, दूर दूर से आप सुन रहे सुनने वालों, व्हाट्सएप पे बरे आता है और हम यहाँ से आपको भी दिल से धन्यवाद कर रही हूँ। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, मेरे दोस्त जो भी कमाया यही रह जाना है, कर ले कुछ अच्छे कर्म, कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरा जाना है। ये लाइन भी बहुत अच्छा है, ज़रूर से सुने कि रोने से तो आंसू भी पराया हो जाता है, रोने से भी आंसू पराया हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से, जी मेरे दोस्तों, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। इंसानियत दिल में होते हैं, हैसियत में नहीं, ऊपर वाला कर्म देखता है वैसे।

अरिजीत सिंह से हाँ यहाँ से हाँ सुने हम कि दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। हाँ दिल भी है जो मानता नहीं, पर मोहब्बत करने चल जाता है। अभिमान, अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आप कुछ किया है। यही फर्क है अभिमान और सम्मान में। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। यही अंतर होता है अभिमान में और सम्मान में। ये दो लाइन भी बहुत सुंदर है, सृष्टि और दृष्टि। सृष्टि कितनी भी बदल जाए फिर भी हम सुखी नहीं हो सकते। सृष्टि कितनी भी बदल जाए फिर भी हम सुखी नहीं हो सकते, पर दृष्टि

कबीरा फुल सॉन्ग फिल्म का नाम ये जवानी है दीवानी। उस फिल्म में रणधीर कपूर जो सुपुत्र है नीतू सिंह, ऋषि कपूर का सुपुत्र है रणधीर कपूर, दीपिका पादुकोण इसमें जो अपना कलाकार दिखाए हैं। दर्द दर्द मेरे दोस्तों, दर्द वही देता है जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं। दर्द वही देता है जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं। गैर गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर माफ़ी मांग लिया करते हैं। बड़ा कठिन बात है ना कि दर्द वही देता है जिन्हें हम अपना अपना हक देते हैं।

अपना समझते हैं, दर्द वही देता है जिन्हें हम आप जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं। गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर माफ़ी मांग लेता है। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथों में होता है। जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगता। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगती। तो आप भी बड़े हैं, आप भी समझदार हैं, तो आप जरूर से अपना समझ से समझें।

हाय बहन, क्या आवाज की मिले हो तुम बड़े नसीबों से। नेहा कक्कर, टोनी कक्कर, ये भाई बहन जो सुना दी हमको।

जी ये रफ़ी जी सुनाती है कि आवाज़ वो नहीं देगा, पर हमारे खातिर ये सुंदर सुंदर गीत और गाकर चले गए हैं सुनने वालों। हम बेशब्द हो जाते हैं क्योंकि ये सब गीत कभी पुराना नहीं होता है, ये हरदम से सदा ही नूतन रहेगा। नूतन मतलब कि नए रहेगा, नवा रहेगा। अब मेरे ख्याल से आप जिस तरह से सुनते हो, जहाँ पे भी सुनते हो, अगर आपको थोड़ा सा पकड़ आ जाएगा तो आप ज़रूर से इसे भी गुनगुनाने लगते होंगे। और साथ ही साथ मेरे ख्याल से आपको वो सब ख्याले जो है ताज़ा करा देते हैं। रफ़ी जी की आवाज़ में हमने श्रवण किए फिल्म का नाम दोस्ती।

दूसरों के परेशानियाँ का आनंद ना लिया करो, कहीं भगवान आपको वो गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलती है। तो इस पर हम जरूर से ख्याल रखें और ध्यान धरें।

दृष्टि नहीं बल्कि दृष्टिकोण सही होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी के रूप में आपको यहाँ पर हम जरूर सुनाना चाहती हूँ, तो यहाँ से हम मिलकर सुने। एक अंधे को मंदिर आया देखकर, एक अंधे जो नेत्रहीन है, सूरदास है, उनको मंदिर में आया देखकर लोग हंस कर बोले, मंदिर में आए हुए लोग एक अंधे को देखकर बोले कि मंदिर में दर्शन के लिए आए तो हो, मंदिर में दर्शन के लिए आए तो हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? ये सवाल किया है जो जिनका नेत्र है, जो देखते हैं, और वो सवाल करते हैं जो नेत्रहीन है कि मंदिर में दर्शन के लिए आए तो हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? तो वो नेत्रहीन सूरदास अंधे ने मुस्कुरा के कहा, क्या फर्क पड़ता है मेरे भगवान को, मेरे भगवान तो मुझे देख लेगा, इसलिए दृष्टि नहीं दृष्टिकोण सही होना चाहिए। वो अंधा बोध सूरदास क्या सुंदर जवाब दिया कि क्या फर्क पड़ता है, मेरे भगवान तो मुझे देख लेगा।

पता नहीं जिंदगानी का, वो तो बात सही है। अगले पल क्या होने वाला है ये तो मुझे भी नहीं खबर है मेरे दोस्तों। आपको बताती हूँ कि पेंसिल और पेन इन दोनों का अंतर क्या है। हाँ आप तो कह देते होगे, हाँ पेन और पेंसिल में अंतर है। पेंसिल जो है हम कहते हैं अपनी भाषा में पतलोत। पतलोत और पेन के बारे में, पेन और पेंसिल के अंतर जानिए, जो जिंदगी से मतलब रखती है। पेन और पेंसिल के अंतर जानिए जो जिंदगी से मतलब रखती है। तो चल के हम यहाँ से जानेंगे। जब हम बड़े हो जाते हैं ना मेरे दोस्तों, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो पेंसिल के बदले हमें पेन दे दिया जाता है, क्योंकि हम समझ जाए कि अब हमारी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं है। एक बच्चा जो शुरुआत करते हैं, या आप भी बड़े हैं जो शुरुआत करते हो कुछ लिखना चाहते हो, तो काफ़ी तौर पे पतलोत से लिखा जाता है, ताकि हम उसे कुछ गलती हो तो हम उसे सुधार सके। और अगर आप पेन से लिख दिए तो उसको सुधारना तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो यही अंतर है पेन और पेंसिल में।

लता जी के आवाज ये सुंदर सा गीत पेश किया गया। फिल्म का नाम धूल का फूल और गीत का बोल तो आपने सुन ही लिया है कि तू मेरे प्यार का फूल है, पर ये भी एक फूल हो गया है। हल्के फूल की सी है जिंदगी, हल्के फूल की सी है जिंदगी, बोझ तो बस खुशियों का है, बोझ तो बस खुशियों का है।

film Nagin se Yesu nersagit. लता जी की आवाज में ये जो हम सोचते हैं सुनने वालों, जो हम सोचते हैं वो सोच का प्रभाव मन पर होता है, जो हम सोचते हैं वो सोच का प्रभाव मन पर होता है, और मन का प्रभाव जो है वो तन पर होता है, यानी लेखाम पर। तो तन और मन का दोनों प्रभाव सारा जीवन पर होता है। तो मेरे दोस्तों, इसलिए प्यारे दोस्तों, भाई बंधु, सदा अच्छा सोचे और हम सब खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहें।

ख़त्म होने जैसा ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, ख़त्म होने जैसा ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई सुबह आपका हम सबका इंतज़ार करते हैं, हमेशा एक नई सुबह आपका हम सबका इंतज़ार करते हैं मेरे दोस्त। कम लोग हो पर अपने हो, कम लोग हो पर अपने हो, ज़िंदगी तमाशा थोड़ी तो है, ज़िंदगी तमाशा तो नहीं कि भीड़ चाहिए। खोए हुए चीज़ अक्सर खूबसूरत लगने लगती है, खोए हुए चीज़ अक्सर खूबसूरत लगने लगती है, जैसे कि वक्त और बचपन।

हम क्या कहे, हम तो भी बेशब्द हो जाते हैं। ये सुंदर गीत फिल्म का नाम 20 साल बाद, 20 साल बाद फिल्म से निकाला गया लता जी की आवाज़ में, कि कहीं दीप जले और कहीं दिल। मंदिर, मंदिर का मतलब मन और दीर, मन के अंदर जाना ही मंदिर है और अंदर जाने का रास्ता केवल ध्यान है। आनंद वहाँ नहीं जहाँ धन मिले, आनंद वहाँ नहीं जहाँ धन मिले, आनंद वहाँ जहाँ मन मिले।

एक दिव्य शक्ति जो इस संसार को चला रही है, एक दिव्य शक्ति जो इस संसार को चला रही है, उससे यही प्रार्थना है, उससे यही प्रार्थना है कि वो हम सब का भला करे, हम सब का खुश रखे, हम सबको खुशी रखे, हम सबको निरोग रखे, हम सबको आत्मिक शक्ति प्रदान करे।

ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, फिल्म का नाम इज्जत सदाबहार, गीत आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है मोहम्मद रफ़ी जी और लता जी। ये सुंदर सा गीत मिलके और फरमा दी है, अच्छा बनो मेरे दोस्तों, अच्छा बनो। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप, भगवान, अपने आप के लिए, अपने आप के नज़र में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या, दुनिया वालों का क्या, वो तो आपके तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी में हंसेंगे।

लता जी, लता जी की आवाज़ में फिल्म का नाम गुमनाम है, कोई नहीं, फिल्म का नाम तो गुमनाम है, टाइटल सॉन्ग वही फिल्म से निकाल दिया गया है कि गुमनाम है। किसी ने रोज़ा रखा तो किसी ने उपवास रखा, किसी ने रोज़ा रखा तो किसी ने उपवास रखा, कबूल और स्वीकार उसी का दुआ प्रार्थना हुई जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। जमाने से मोहब्बत निभाने वाले, जमाने से मोहब्बत निभाने वाले, पहले उससे तो मोहब्बत निभाओ जिसने तुम्हें जन्म दिया है।

खाई नहीं खाई ठोकर सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण बनती है। एक बार फिर मेरे सुनने वालों, बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण बनती है।

वाकई में आप ही प्यार हो। फाउनिस्तानी रेडियो से आप जुड़े हैं, चलते हैं आपको लेकर चलते हैं सुनने के लिए। फिल्म अपना खून से।

सुन सजना, फरमा दी है आशा भोसले जी मोहम्मद रफ़ी जी के साथ फिल्म का नाम अपना खून नेहा दीन अख्तन सैफ़न तक के ये पिक्चराइज हुआ फिल्म है। सुनो स

मुकेश जी और लता नहीं नहीं मुकेश जी और आशा भोसले जी की आवाज में कि एक बार मुस्कुरा तो दो फिल्म का नाम है मेरे दोस्तों। एल का न्यू वीक इस अनकाउंस ओम फ्रेश एनर्जी और द ड्रोमन वार्तमाकन।

ख्यालों में किसी के नेक अंतिम फैफ तक के ये पिक्चराइज किया फिल्म है मेरे प्यारे सुनने वालों। गीता दत्त और मुकेश जी के आवाज़ में यहाँ से मिलकर हमने श्रवण की है। आज के प्रोग्राम में उनको भी शामिल कर दिया गया है। वेनार सेंखे मेंशन दी नोइट इट्स फाउट दून वेनार सेंखे मेंशन दी नोइट इट्स फाउट दून मार दैट सेंट मेंशन दी नोइट ऑफ हेवन सो आज यू

खूब फरमा दी और हमने सुन ले कि पायल की झनकार रस्ते रस्ते मेरे दोस्तों अनमेंस अनमेंस सोमस्ता एक ऑप मेतनलाख सोमस्ता एक ऑप मेतनलाख सोम्स ओक एन नोर्से बुई सोम्स बार्स्ट एक फान द एनर्जी मार सोम्स ओक बेन एक लुई सोम्स रिएगेर एक नोग फेल सोम्स लात एक आलस सोम्स लात आलस मे काउद सोम्स फूल एक मे गवोन वाट फ्रेम्ड मार सोम्स ओक हेल वर्ट्राउद सोम्स स्टा एक ओवरऑल फॉर ओपन सोम्स स्लुइट एक आलस बुइटन सोम्स लूप एक गवोन टे नोरन मार सोम्स ook wel te fluiten. Soms gaat het helemaal niet goed. Soms gaat het wel naar wens. Het hoort er denk ik allemaal bij. Het hoort er denk ik allemaal bij. Bij het zijn van mens.

फिल्म अप्रैल फूल से ये सुंदर सा गीत और कितने ही प्यार से फरमाए हैं रफी जी अपने मशूका के लिए, अपने प्रेमिका के लिए इतनी सारी दुआएं हैं लफ्जों में आपने सुने होंगे। सिंगल सैन बते कनित दैट मैन निट्स ओवर द लिफ्ट द वेट हैत बते कन दैट मैन खनुख वेट ओम ऑफ द यूएस्ट पर्सन द वाख्तन।

ऐना सुंदर गीत किशोरदा जी की आवाज में कि प्यार बांटते चलो, अवश्य अवश्य प्यार बांटना ही चाहिए। आपके लिए गुजारिश हुआ गीत एक बार फिर यहाँ से हम चला देते हैं।